एफएम 100.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के चुरू केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आज गुरुवार है। शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 11वीं तिथि। तदनुसार 2 जुलाई 2026। इस वक्त समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:59 हुए हैं। मंगल ध्वनि के साथ हमारी ये प्रातःकालीन सभा अब आरंभ होती है।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाई तकाइची के साथ वार्ता करेंगे। ये वार्ता दोनों पक्षों को आपसी हित के मुद्दों की समीक्षा तथा द्विपक्षीय सहयोग मजबूत बनाने का अवसर प्रदान करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वार्ता के बाद कुछ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाने की भी संभावना है।
1: पूर्वोत्तर भारत में संपर्क और विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत और जापान मिलकर काम कर रहे हैं। दोनों देश बुनियादी ढांचे, शहरी विकास, ऊर्जा, कृषि, पर्यटन और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में सहयोग कर रहे हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र जापान की स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र की परिकल्पना में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि यह दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच एक सेतु का काम करता है। 2025 से अब तक जापान और पूर्वोत्तर राज्यों के बीच कई उच्च स्तरीय दौरे हुए। इसी वर्ष फरवरी में जापान के विदेश मामलों के राज्य मंत्री इवाओ होरी ने भारत का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने मेघालय और असम के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात की। इस वर्ष अप्रैल में मेघालय के मुख्यमंत्री जापान गए थे। इस यात्रा के दौरान एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके तहत अगले 5 वर्षों में मेघालय के 5,000 युवाओं को जापान में कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री तकाइची कल शाम भारत की 3 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। ये भारत की उनकी पहली आधिकारिक यात्रा है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज जापान की प्रधानमंत्री सनाई तकाइची के साथ व्यापक विचार विमर्श से दोनों देशों की साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने में सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान हिंद प्रशांत तथा अन्य क्षेत्रों में भी शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा प्रयास जारी रखेंगे। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की 2 बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148 AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग का निर्माण शामिल है। देश में पहली बार आंध्र प्रदेश के

0: दिल्ली हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर उड़ान के लिए पहली निजी पॉइंट इन स्पेस यानी पिंस व्यवस्था को मंजूरी दी गई है। इस व्यवस्था में उन्नत उपग्रह तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इससे उन हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर के सुरक्षित संचालन में सहायता मिलेगी जहां लैंडिंग के लिए पारंपरिक व्यवस्था नहीं है। नागर विमानन मंत्रालय ने कहा कि पिंस प्रक्रिया खराब मौसम और जमीनी नेविगेशन सहायता उपलब्ध न होने की स्थिति में विशेष रूप से उपयोगी है। इसका विकास भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने किया है। झारखंड ने पूर्वी सिंहभूम जिले में मलेरिया से 4 लोगों की मृत्यु के बाद पूरे राज्य में अलर्ट जारी किया है। सरकार ने सभी उपायुक्तों को वेक्टर जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने प्रभावित क्षेत्रों में बुखार का सर्वेक्षण, मलेरिया की त्वरित जांच और मरीजों के समय पर इलाज के निर्देश जारी किए हैं। श्री अमरनाथ जी तीर्थ यात्रा आज से शुरू हो रही है। तीर्थयात्रियों का पहला जत्था जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर पहुंच चुका है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और आवास सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। 57 दिनों की ये यात्रा 3 जुलाई से नुनवान, पहलगाम और बालतल मार्गों से कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू होगी। पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला गया T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच कल बारिश के कारण रद्द हो गया। 5 मैचों की श्रृंखला में दोनों टीम 0-0 से बराबरी पर हैं। बारिश के कारण इंग्लैंड अपनी पारी शुरू नहीं कर सका। श्रृंखला का दूसरा मैच शनिवार को मैनचेस्टर में खेला जाएगा। और डूरंड कप फुटबॉल का 135वां संस्करण 25 जुलाई से कोलकाता में शुरू होगा। ये प्रतियोगिता 23 अगस्त तक चलेगी। मैच रांची, इम्फाल, शिलांग और गुवाहाटी में खेले जाएंगे। ये पहला मौका है जब डूरंड कप के मैच झारखंड की राजधानी रांची में भी रखे गए हैं। इसके अलावा फीफा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड ने DR कांगो को 2-1 से हराकर अंतिम 16 में जगह बना ली है। अटलांटा में खेले गए मुकाबले में कप्तान हैरी केन ने मैच के अंतिम 15 मिनट में 2 गोल दागकर इंग्लैंड को रोमांचक जीत दिलाई। अंतिम 16 में इंग्लैंड का मुकाबला 6 जुलाई को सह मेजबान मैक्सिको से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का चुरू केंद्र है। FM 107 मेगाहर्ट्ज पर हम बोल रहे हैं। अब कार्यक्रम विवरण में आप जानेंगे हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के कार्यक्रमों और उनके प्रसारण समय के बारे में।

आप सुन रहे हैं हमारे आज के कार्यक्रमों का विवरण। अभी थोड़ी ही देर बाद 6:10 पर श्रोता सुनेंगे कार्यक्रम चिंतन। आज का विषय रहेगा संतोष और सुख का संबंध। गीत बहार फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम होगा 6:45 पर। वंदना आप सुनेंगे 6:15 पर। तत्पश्चात आप सुनेंगे गीत बहार 6:45 पर। श्री रामचरितमानस गान आज आप सुनेंगे बालकांड से संकलित एपिसोड संख्या 16 7:20 पर। नमस्कार चूरू ये कार्यक्रम होगा 7:30 पर। 8:00 हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार प्रभात होंगे। 8:15 पर श्रोता सुनेंगे मॉर्निंग न्यूज। 8:30 पर सुगम संगीत का कार्यक्रम होगा सुर संगम। हिंदी में प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे 9:00। 9:10 पर आप सुनेंगे देशगान। 9:15 पर लोक संगीत का कार्यक्रम होगा मरुवाणी। फेसबुक कमेंट पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम दिल से दिल तक आप सुन सकेंगे 9:30 पर। हमारे मुंबई केंद्र से विविध भारतीय कार्यक्रम होंगे 10:00। 11:05 पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा चित्रपट संगीत। एनसीआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आप सुनेंगे 12:00। 12:30 पर लोक संगीत का कार्यक्रम होगा माटी के स्वर। आज के कलाकार रहेंगे अफरोज पानो। हिंदी में प्रादेशिक समाचार हमारे जयपुर केंद्र से आप सुनेंगे 1:00। 1:05 पर कार्यक्रम होगा महिला जगत। 2:00 हमारे दिल्ली केंद्र से मिड डे न्यूज होगी। 2:15 पर आप सुनेंगे दोपहर समाचार। 2:30 पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा तराने नए पुराने।

शाम 4 बजे कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स के साथ आरंभ होगी हमारी आज की दूसरी सभा। ये कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले होगा। शाम 5 बजे आप सुनेंगे आपका पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी। शाम 6 बजे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार होंगे। 6:05 पर श्रोता सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार। देशभक्ति फिल्मी गीत होंगे शाम 6:10 पर। संस्कृत में समाचारों के लिए समय रहेगा 6:20 का। हमारे जयपुर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार होंगे शाम 6:30 पर। तत्पश्चात कार्यक्रम जिले की चिट्ठी आप सुन सकेंगे 6:40 पर। 6:45 पर राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार होंगे। शाम 7 बजे कार्यक्रम होगा किसान वाणी। राजस्थानी लोक संगीत आप सुनेंगे 7:30 पर। रात्रि 8 बजे श्रोता सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता। समाचार संध्या हमारे दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे 8:45 पर। 9 बजे आप सुनेंगे न्यूज एट 9। 9:15 पर राजस्थानी लोक संगीत होगा। हमारे दिल्ली केंद्र से कंट्री वर्ड आप सुनेंगे 9:30 पर। प्रादेशिक लोक एवं सुगम संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले होगा रात्रि 10 बजे। 11 बजे हिंदी में समाचार और 11:05 पर श्रोता सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार।

सभी श्रोताओं को रेडियो साथी अंकिता का नमस्कार। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं चिंतन। आज का हमारा विषय है संतोष और सुख का संबंध। बिल्कुल, हम इस बात को अच्छे से जानते हैं कि चाहे हम कुछ भी प्राप्त कर लें, हम कहीं पर भी पहुंच जाएं, कितना ही हम अपने आप को खुश साबित करने की कोशिश करें, लेकिन जब तक हम आंतरिक तौर पर संतोष को प्राप्त नहीं होंगे, हमें सुख का संबंध इससे नहीं नजर आएगा। इसीलिए श्रोताओं, संतोष और सुख का संबंध बहुत गहरा है, इसे हमें समझना होगा, क्योंकि हम अक्सर बाहरी चीजों में सुख को तलाश रहे होते हैं। ऐसी भौतिक चीजें जो हमें लगता है कि हमें सुख देंगी, बड़े बड़े घर बनाना, गाड़ियां लेना या फिर इसी प्रकार के अपने शौक को पूरा करना। शौक पूरे करने चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आंतरिक संतुष्टि जिस कार्य से मिले वो हमें करना चाहिए, और आंतरिक संतुष्टि हमें सुख को देगी, ये हमें पता होता है। क्योंकि जब तक हम आंतरिक तौर पर किसी भी चीज से संतुष्ट नहीं होंगे, तब तक हम सुख को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। कहीं कहीं हम देखते हैं किसी व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं होता, इतने कितने ही संत हुए हैं जो हम पढ़ते हैं और सुनते हैं, जिन्होंने अपने जीवन में साधु व्रत धारण किया, साधु रूप जीवन में उन्होंने सभी चीजों का त्याग किया, लेकिन फिर भी वो बड़े खुश थे। उसका कारण यही था कि वे आंतरिक तौर पर संतुष्ट थे। संतोष और सुख का संबंध बहुत गहरा है, अटूट है। हम भारतीय दर्शन के अनुसार भी बात करें तो संतोषम परम सुखम, यानी संतोष ही सबसे बड़ा सुख है। बाहरी चीजों से मिलने वाला सुख क्षणिक होता है, जबकि मन की तृप्ति से मिलने वाला सच्चा सुख स्थायी और आंतरिक होता है। संतोष लालच और अत्यधिक इच्छाओं की सीमा तय करता है। अतृप्त इच्छाएं हमेशा तनाव और दुख का कारण बनती हैं। ऐसी अतृप्त इच्छाएं जो हमें लगता है हम पूरी नहीं करेंगे तो हमें चैन नहीं मिलेगा, लेकिन वे इच्छाएं पूरी होने के बाद भी हमें चैन नहीं मिलता है, क्योंकि वो हमें संतोष को प्राप्त नहीं कर रही है। संतोष हमें वर्तमान में जो भी संसाधन उपलब्ध हैं उन्हीं में आनंद लेना सीखना, यही संतोष है। इससे मन शांत और सुखी रहता है। ऐसा अगर हम सीख जाते हैं तो फिर हम महसूस कर सकते हैं इस बात को कि हम कितना सुखी हैं। सच्चा सुख किसी वस्तु में नहीं बल्कि मन की उस अवस्था में है जहाँ पाने की कोई व्याग्रता नहीं रहती है। एक अजीब सा अपने अंदर किसी प्रकार का खालीपन नहीं रहता है। ये बात हम ऐसे समझ सकते

सकते हैं कि जब भी हम बाजार में जाएं कुछ खरीदने के लिए, तब अगर हमारे पास कितने भी पैसे हो, चाहे जेब खाली हो, हम तब तक संतुष्ट नहीं होंगे जब तक हम आंतरिक तौर पर अपने आप को भरा हुआ महसूस नहीं करेंगे। मन खाली हो तो हम कहीं पर भी जाएं, उस मन को हम नहीं भर सकते हैं। लेकिन अगर मन भरा हो तो चाहे पॉकेट खाली हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी प्रकार जिस प्रकार हम मार्केट में देखते हैं, बाजार में हम देखते हैं कि किस प्रकार कोई व्यक्ति कितना सामान खरीद रहा है, जरूरत का और व्यस्त, हम ये देखते रहते हैं कि कितना ही अननेसेसरी या बिना यूज का सामान वो खरीदता ही चला जाता है। उसे देखकर इस बात का महसूस हम कर सकते हैं कि भाई वो कितना ज्यादा असंतुष्ट है, वो अपनी सुख को इन चीजों में तलाश रहा है, जबकि इन चीजों को प्राप्त करना घर जाके रख देना, यहाँ सुख प्राप्त होना असंभव है। सुख की प्राप्ति तब होगी जब वो सारी चीजें वैसे की वैसी बाजार में पड़ी रहें और हम वहां से निकल जाएं किसी मलाल के बिना। यही आंतरिक संतुष्टि है और यही हमें सुख को देती है। इसलिए संतोष और सुख का संबंध बहुत गहरा है। हमें हमेशा अगर सुख चाहिए, संतोष को पहले अपने अंदर लाना होगा, और ये संतोष अगर हमारे पास आ गया तो किसी चीज के लिए मन में खाली स्थान नहीं रहता है।

आप सुन रहे थे वंदना, हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में समय 6:45 हुए हैं। अब आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत पहाड़।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही आप सभी का स्वागत है फिल्म संगीत के कार्यक्रम गीत बहार में। प्रस्तुति अभी आपने सुनी मोहम्मद रफी की आवाज में कन्यादान फिल्म से।

क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चूरू के साथ। आकाशवाणी चूरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चूरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चूरू, आपकी पहचान, हमारी आवाज़।

आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत बहार। शर्मिली फिल्म का गीत अब आप सुनेंगे लता मंगेशकर, किशोर कुमार और नीरज की आवाज में।

गीत बहार की ये प्रस्तुति अभी आपने सुनी लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाज में जीवन मृत्यु फिल्म से। भीगी पल के इस फिल्म का गीत अब आप सुनेंगे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की ही आवाज में।

0: श्रोता भी सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत बहार। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। समय 7:20 हुए हैं। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस गान। आज आप सुनेंगे बालगान से संकलित एपिसोड संख्या 16। कलाकार हैं ए हरिहरन और साथी संगीत दिया है सतीश भाटिया ने।
1: एपिसोड नंबर 16।

संवत 1631 के चैत्र मास की नवमी तिथि मंगलवार को अयोध्या नगरी में गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना आरंभ की थी। भक्तजन का विश्वास है कि श्री रामचंद्र की जन्म तिथि को सारे तीर्थ अयोध्या चले आते हैं। असुर, नाग, पक्षी, मनुष्य, मुनि और देवता सभी अयोध्या नगरी आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं और श्री राम की कीर्ति और यश का गान करते हैं। कुपथ, कुतर्क, कुचाल और कलयुग के छल प्रपंच और कपट दंभ आदि को भस्म करने के लिए श्री राम के गुणों की तुलना प्रचंड अग्नि से की गई है और उनका चरित्र पूर्णिमा के चंद्रमा की शीतल स्निग्ध किरणों की भांति सबको सुख देने वाला है। तुलसीदास का निवेदन है कि जिस प्रकार विस्तार से भगवान शंकर ने पार्वती जी के प्रश्नों के उत्तर दिए थे, उसी प्रकार वो भी इस अद्भुत कथा की रचना करके उसे गाकर कहेंगे। भक्त कवि की विनय है कि जिसने ये कथा पहले कभी नहीं सुनी हो वो इसे सुनकर आश्चर्य ना करे, क्योंकि हरे की भांति हरे की कथा भी अनंत है।

सभी श्रोताओं को रेडियो साथी अंकिता का नमस्कार। श्रोताओं, शुरू हो चुका है आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम नमस्कार शुरू। आज के कार्यक्रम में मैं बनी रहूंगी आपके साथ प्यारे प्यारे गीतों, बहुत सारी जानकारी योजनाओं की और जानकारी पीएम सूत्री 15 सूत्री कार्यक्रम जो है उसके बारे में आपको जानकारी देने के लिए। आप भी बने रहें कार्यक्रम नमस्कार शुरू में।

बात हम आज करने जा रहे हैं बात की। बिल्कुल, हम हमेशा ये सोचते हैं कि कुछ खास मुद्दों पर बात की जाए, कुछ खास विषयों को लिया जाए, लेकिन सच में जो विषय हमारे सामने आता है, आज आया है, उसे हम कह सकते हैं बात करना। श्रोतों, बात करने के लिए हम जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं वो शब्द कैसे हों, उन शब्दों का इस्तेमाल कैसे किया जाए, कुछ लोग हम देखते हैं बहुत ही सोच समझ कर अपने शब्दों का चयन करते हैं, आराम से बात करते हैं, धीरे धीरे बात करते हैं, बात को तोल मोल कर बोलते हैं। इसके विपरीत कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिना सोचे समझे, बिना विराम दिए लगातार अपनी बात को कहते ही चले जाते हैं। अलग अलग व्यवहार से अलग अलग बातों का कहने का अंदाज अलग अलग हम देखते हैं। श्रोतों, हम कुछ बातों को जाने और समझें तो हम इन दोनों में से किसे अपने व्यक्तित्व में लें, अपनी आदत में शुमार करें, ऐसा सोचने के लिए हम स्वयं इसे प्रैक्टिकली देख सकते हैं। जो लोग अपनी बात को बिना सोचे समझे, बिना विराम दिए, एक ही सुर में बोलते चले जाते हैं, अक्सर हम उन लोगों की बातों को ज्यादा अहमियत नहीं देते हैं। उनकी बात समझ में आए उससे पहले दूसरी बात सामने आ जाती है। उनकी बात को ठीक से समझकर हम उत्तर दें, उस उत्तर का इंतजार वे नहीं करते हैं, सीधा अपनी बातों को कहने में ज्यादा विश्वास रखते हैं। ऐसे लोग हमेशा सिर्फ और सिर्फ अपनी बात कहकर अपना दिल हल्का करना चाहते हैं, लेकिन अगर जब तक वो सामने वाले के विचार को नहीं समझ पाएगा, आपके विचार पर उसकी प्रतिक्रिया को नहीं समझ पाएगा, तो फिर तब तक उसकी बात की कोई अहमियत नहीं रह जाती है। श्रोताओं, जब भी हम मुख से कुछ शब्द निकालें, हमें सोच समझ कर निकालना चाहिए। ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि एक बार मुख से शब्द जो निकल जाते हैं वो वापस नहीं लिए जा सकते। बहुत बार हम प्रैक्टिकली इस बात को अपने जीवन में महसूस कर चुके होंगे कि कुछ शब्द हम ऐसे निकाल देते हैं, बाद में चाहे हमें पछतावा हो रहा हो कि हमने गलत बोल दिया, लेकिन जिस समय वो शब्द निकल गए, अब वो शब्द वापस नहीं आते। हम अपनी तरफ से सामने वाले से माफी भी मांग लेते हैं, लेकिन फिर भी वो ये शब्द वापस नहीं आते जो एक बार सामने वाले को चुभ जाते हैं। अक्सर हम बहुत बार ये भी देखते हैं कि जो शब्द हम निकाल रहे हैं, निकल गए हैं हमारे मुख से, वे शायद सही भी नहीं है जिसके लिए हमने कहे हैं, और फिर भी हमने निकाल दिए तो भी हमें अपने आप पर बहुत पछतावा होता है। हमारा पछतावा तो है ही, सामने वाले का दुख भी इसमें शामिल है। उसे हमारे लिए कितना हमारे विचारों को लेकर के विचार बन जाता है कि हम उसके बारे में क्या सोचते हैं, और वह व्यक्ति अपने आप में हमसे थोड़ा अलग हो जाता है, दूर चला जाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि हमारे विचार, हमारे मुख से जो निकले हैं शब्द, उनसे उसके विचार हमारे साथ मेल नहीं खा रहे हैं। इसलिए हम हमेशा अपने शब्दों को सोच विचार कर निकालें तो ज्यादा जरूरी होगा, क्योंकि मुंह से निकलने वाले शब्द हमेशा एक गहरा असर छोड़ते हैं। बिना सोचे समझे बोले गए जो शब्द हैं, अनजाने में सामने वाले के मन को बहुत ठेस पहुंचा सकते हैं। इसलिए सोच समझकर उचित शब्दों का चयन करके ही बात कहनी चाहिए, ताकि संबंधों में भी मधुरता बनी रहे। श्रोताओं, हमें जब भी कुछ कहना है तो उसे तोल मोल कर अपने मन से बाहर निकालना चाहिए, अपने मुख से बाहर निकालना चाहिए। सामने वाले की स्थिति और दृष्टिकोण को समझकर ही अपनी प्रतिक्रिया देनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि हमारे द्वारा कहा गया सच सामने वाले को अच्छा लगे, ऐसा सच जो दूसरों को बुरा लगे, और जरूरी भी नहीं है आपके बोलना उसे तो फिर नहीं बोलना चाहिए। अगर जरूरी है तो बोलना ही पड़ेगा सच, लेकिन अगर नहीं जरूरी है तो ठीक है, उसे इग्नोर भी किया जा सकता है, क्योंकि वो सच हो सकता है सामने वाले को बहुत ज्यादा चुभ जाए। ऐसे शब्द हम ढूंढ कर लाएं जो हमारी मन की स्थिति को बाहर बयान कर रहा है, वो शब्दों के साथ वैसा ही बयान कर सकें जैसा हमारे मन में है। कभी कभी शब्दों का चयन व्यक्ति की बात करने के तरीके को व्यक्त कर देता है। एक ही बात को अलग अलग प्रकार से अलग अलग रूप में कहा जा सकता है। कभी कभी किसी के द्वारा कही गई प्रशंसा भी चुभ जाती है, और कभी कभी किसी के द्वारा कहा गया टोन भी चुभता नहीं है। ये सारा शब्दों का ही खेल है। अगर कुछ कहना है, चाहे वह सत्य है और आपको कहना ही है, शब्दों का चयन अच्छा करें, जिससे सामने वाले को ये ना लगे कि आप उसे हर्ट कर रहे हैं, उसे ये लगे कि आप उसे एक राय दे रहे हैं। इससे वो अपने आप में उसमें सुधार भी कर सकेगा, और आपके द्वारा कही गई बात का उसे बुरा भी नहीं लगेगा, साथ ही वो आपको अपना एक शुभचिंतक भी समझने लगेगा। इसलिए हमें अपने जीवन में शब्दों का चुनाव ठीक करना बहुत जरूरी है। हम जब भी बोलें तो सोचकर बोलें कि ये बात अगर मेरे लिए कोई कहे तो मुझे कैसा लगे, इस बात की प्रतिक्रिया मेरे लिए कैसी होगी, तो

हम अपने मुख से कैसे किसी और को ऐसे शब्दों के लिए मान सकते हैं, ऐसे शब्द जो हमें अच्छे लगे हम दूसरों के लिए वही निकालें, ऐसा अगर हम सोचेंगे तो फिर स्वतः ही हमारे मुख से अच्छे शब्द ही निकलेंगे, क्योंकि हम कभी भी स्वयं के लिए कुछ ऐसे शब्द जो हमें चुभ सकते हैं, अच्छे नहीं लगेंगे, उनका चयन नहीं करेंगे। तो हमें दूसरों के लिए भी ऐसे शब्दों का चयन कभी नहीं करना चाहिए।

0: ये आकाशवाणी का प्रसारण है, आप सुन रहे हैं 100.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी चूरू।
1: श्रोताओं, अंतराल के बाद आइए कार्यक्रम में अब आपको जानकारी देते हैं। पीएम 15 सूत्री कार्यक्रम तकनीकी शिक्षा के माध्यम से कौशल उन्नयन के बारे में। श्रोताओं, अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री ने नए 15 सूत्री कार्यक्रम का उल्लेख। मुख्य उद्देश्य अल्पसंख्यक युवाओं को शिक्षा, प्रशिक्षण और तकनीकी कौशल के माध्यम से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना है। ये कार्यक्रम कौशल विकास योजनाओं के जरिए युवाओं के सपनों को साकार करने का एक सशक्त माध्यम है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत तकनीकी शिक्षा और कौशल उन्नयन से जुड़ी प्रमुख पहलों को शामिल किया गया है। निःशुल्क कोचिंग और सहायता नया सवेरा के नाम से अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में नौकरियां पाने में सक्षम बनाना है। प्रतिष्ठित तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए निःशुल्क कोचिंग प्रदान करना है। व्यावसायिक और तकनीकी प्रशिक्षण की बात करें तो कौशल विकास के नाम से अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना और नई मंजिल जैसी योजनाओं के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाता है। इन योजनाओं के तहत स्कूल छोड़ चुके युवाओं को बाजार विशिष्ट तकनीकी कौशल प्रदान किया जाता है। वित्तीय सहायता और छात्रवृत्ति क्या इसमें जो प्रावधान है, प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक और योगदान योग्यता सह साधन आधारित छात्रवृत्तियां हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास का वित्त निगम और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के जरिए स्वरोजगार के लिए आसान ऋण प्रदान करना है। सरकारी मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित अन्य योजनाओं जैसे समग्र शिक्षा अभियान, कौशल विकास योजना, अल्पसंख्यकों के लिए 15% का विशेष आवंटन सुनिश्चित किया गया है।

श्रोताओं, कार्यक्रम में आइए एक बार फिर हम बात करते हैं हमारे स्वास्थ्य को लेकर। शारीरिक स्वास्थ्य की बातें हम अक्सर करते ही रहते हैं, शारीरिक स्वास्थ्य का हम ध्यान भी रखते हैं, मानसिक स्वास्थ्य उतना ही जरूरी है जितना हमारा शारीरिक स्वास्थ्य है। श्रोताओं, शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य भी हमें ध्यान रखना चाहिए, दोनों एक दूसरे के पूरक है। अच्छे मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक ऊर्जा, नींद और इम्यूनिटी बढ़ती है, जबकि खराब मानसिक स्वास्थ्य से दिल की बीमारी और तनाव जैसी शारीरिक समस्याएं हो सकती हैं। हमें इसके लिए योग या टहलने जैसी

गतिविधियां शरीर को फिट रखती हैं, इनको हमें हमारी दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। और दिमाग में एंडोर्फिन खुशी वाला जो हार्मोन है उसे बढ़ाने की जो ये हमारी नियमित व्यायाम की प्रक्रिया है, इसे हमें करना चाहिए। हरी सब्जियां और फल खाना चाहिए। अत्यधिक चीनी और वसायुक्त भोजन से हमें बचना चाहिए। मानसिक और शारीरिक रूप से ये हमें सुस्ती प्रदान करते हैं। नींद की बात करें तो 7 से 9 घंटे की अच्छी नींद मानसिक शांति और शारीरिक रिकवरी के लिए बहुत जरूरी है, इसे हमें लेना ही चाहिए। मेडिटेशन, ध्यान यानी और गहरी सांस लेने के व्यायाम हमें जरूर करने चाहिए, इसे हमें मानसिक शांति की प्राप्ति होती है। हमारी शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा बने, इसके लिए हमें और भी बहुत सी ऐसी प्रक्रियाएं हैं जिनको हमारे जीवन में उतारना चाहिए। हमें हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखना चाहिए।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार चोरू। हम आकाशवाणी के चोरू केंद्र से बोल रहे हैं। समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 8 बजे हैं। अब आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार प्रभात। 8:15 पर श्रोता सुनेंगे मॉर्निंग न्यूज़।

0: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाची के साथ आज नई दिल्ली में वार्षिक शिखर वार्ता करेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ब्याज दर 8.25% रखने की घोषणा की। केंद्र सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर नए यूजर नेम फीचर को लेकर मेटा को नोटिस जारी किया, 3 दिन के भीतर स्पष्टीकरण मांगा। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण रोकने के लिए एक स्थायी शीतकालीन प्रदूषण मास्टर प्लान की अधिसूचना जारी की। फीफा फुटबॉल विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को 3-2 से हराया और पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच पहला T20 मैच बारिश के कारण रद्द। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाची के साथ वार्षिक शिखर वार्ता करेंगे। ये वार्ता दोनों पक्षों को आपसी हित के मुद्दों की समीक्षा तथा द्विपक्षीय सहयोग मजबूत बनाने का अवसर प्रदान करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वार्ता के बाद कुछ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाने की भी संभावना है।
1: नवंबर 2024 में टोक्यो में आयोजित पहले आर्थिक सुरक्षा संवाद के दौरान भारत और जापान ने रणनीतिक सहयोग के लिए 5 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की थी। इनमें सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, फार्मास्यूटिकल्स, स्वच्छ ऊर्जा और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शामिल है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के दौरान जापान के प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी। भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी के एजेंडे को आगे बढ़ाने का प्रमुख मंच बना हुआ है। वर्ष 2025 में आयोजित वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान जापान भारत मानव संसाधन आदान प्रदान एवं सहयोग कार्य योजना शुरू की गई। इसके तहत अगले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच 5,00,000 लोगों के 2-तरफा आदान प्रदान का लक्ष्य रखा गया है। इसमें भारत से जापान जाने वाले 50,000 कुशल और अर्ध कुशल कर्मी भी शामिल हैं। दोनों देशों के बीच विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और अन्य वरिष्ठ स्तरों पर भी नियमित रूप से बैठकें और उच्च स्तरीय आदान प्रदान होते रहते हैं। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री तकाईची भारत की 3 दिन की यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। ये भारत की उनकी पहली आधिकारिक यात्रा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज जापान के प्रधानमंत्री के साथ व्यापक विचार विमर्श से दोनों देशों की साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने में सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत और जापान हिंद प्रशांत तथा अन्य क्षेत्रों में भी शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा प्रयास जारी रखेंगे। भारत और मलेशिया ने कल नई दिल्ली में आपसी सैन्य सहयोग की समीक्षा की। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बैठक में दोनों पक्षों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और मुक्त आवाजाही को लेकर प्रतिबद्धता दोहराई। 12वीं उपसमिति की बैठक में दोनों देशों के बीच मौजूदा रक्षा पहलू, सैन्य संपर्क, द्विपक्षीय अभ्यास, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण, समुद्री तथा अन्य उभरते क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा हुई। केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफओ योजना 2026 को अधिसूचित कर दिया है। ये योजना 29 जून से प्रभावी हो गई है। नई योजना 1952 की कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम का स्थान लेगी। इस योजना का उद्देश्य डिजिटल अनुपालन को मजबूत करना, प्रशासनिक दक्षता में सुधार करना, खातों के स्थानांतरण को आसान बढ़ाना और भविष्य निधि ढांचे को नए श्रम कानून के अनुरूप बनाना है। नई योजना में अनिवार्य ईपीएफ अंशदान कर्मचारी और नियोक्ता दोनों के वेतन का 12% बना रहेगा। केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित प्रतिष्ठानों पर मौजूदा 10% की दर लागू रहेगी। योजना में आंशिक निकासी के नियमों को भी अद्यतन किया गया है। योजना में पारदर्शिता में सुधार और भविष्य निधि प्रबंधन को अधिक कुशल बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग, ऑनलाइन दावों, ई पासबुक और यूनिवर्सल

0: खाता संख्या से जोड़ने पर जोर दिया गया है। देश में पहली बार आंध्र प्रदेश के उंडवल्ली हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर उड़ान के लिए पहली निजी पॉइंट इन स्पेस यानी पिंस व्यवस्था को मंजूरी दी गई है। इस व्यवस्था में उन्नत उपग्रह तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इससे उन हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर के सुरक्षित संचालन में मदद मिलेगी जहां लैंडिंग के लिए पारंपरिक व्यवस्था नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर की शुरुआत करने के मामले में मेटा को नोटिस जारी किया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार सरकार ने विस्तृत जानकारी 3 दिन के भीतर उपलब्ध कराने को कहा है। एक रिपोर्ट।
1: सूत्रों के अनुसार मंत्रालय ने मेटा को यह भी निर्देश दिया है कि इस मामले पर परामर्श पूरा होने तक यूजर नेम फीचर शुरू न किया जाए। मंत्रालय ने व्हाट्सएप द्वारा की गई एक सार्वजनिक घोषणा पर संज्ञान लिया है। इस घोषणा में व्हाट्सएप ने भारत सहित वैश्विक स्तर पर चरणबद्ध तरीके से अपने यूजर नेम फीचर को लागू करने की बात कही थी। व्हाट्सएप ने बताया कि एक बार ये फीचर सक्रिय हो जाने पर पहली बार संपर्क करने वाले व्यक्ति को प्राप्तकर्ता का फोन नंबर दिखाई नहीं देगा और एक वैकल्पिक यूजर नेम को अतिरिक्त नियंत्रण के रूप में लगाया जा सकता है। ऐसी आशंकाएं हैं कि इस फीचर से ऑनलाइन धोखाधड़ी, डिजिटल अरेस्ट और साइबर धोखाधड़ी की घटनाएं बढ़ सकती हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एकीकृत रक्षा स्टाफ के प्रमुख रहे एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने कल नए वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ का कार्यभार संभाल लिया है। उन्होंने अवकाश प्राप्त एयर मार्शल नागेश कपूर का स्थान लिया है। श्री नागेश कपूर 4 दशक से वायुसेना में हैं। उनके पास 3,500 घंटे से अधिक का उड़ान अनुभव है। उधर लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन ने थलसेना उप प्रमुख का पदभार संभाल लिया है। सरकार ने विदेश सचिव विक्रम मिश्री का कार्यकाल 14 जुलाई 2027 तक के लिए बढ़ा दिया है। श्री मिश्री 1989 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक स्थायी शीतकालीन प्रदूषण मास्टर प्लान अधिसूचित किया है। यह हर साल 1 नवंबर से 28 फरवरी तक लागू रहेगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस अधिसूचना में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के संशोधित दिशा निर्देश और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश शामिल हैं। एक रिपोर्ट।
2: नई व्यवस्था के अंतर्गत केवल वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र वाले वाहनों को ही पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और एलपीजी पंपों से ईंधन मिलेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली के बाहर पंजीकृत BS6 से निचले स्तर के सभी मोटर वाहनों के राजधानी में प्रवेश और संचालन पर रोक रहेगी। वहीं सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहन, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, पुलिस वाहन और पर्यावरण विभाग द्वारा विशेष रूप से छूट प्राप्त श्रेणियों के वाहनों को इस प्रतिबंध से बाहर रखा गया है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि सर्दियों के दौरान अधिकृत पार्किंग स्थलों पर शुल्क दोगुना किया जाएगा। उन्होंने बताया कि निर्माण गतिविधियों, धूल प्रदूषण और खुले में कचरा या पत्तियां जलाने पर भी कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्यव्यापी विशेष भूमि मापन अभियान डीजी रोवर की शुरुआत की है। ये अभियान 15 अगस्त तक चलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल सहारनपुर में इस अभियान की शुरुआत की। झारखंड सरकार ने पूर्वी सिंहभूम जिले में मलेरिया से 4 लोगों की मृत्यु के बाद राज्य में स्वास्थ्य अलर्ट जारी किया है। सरकार ने रक्त संक्रमण से फैलने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए सभी उपायुक्तों को तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। इधर स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कल दिल्ली में डेंगू की तैयारियों पर एक समीक्षा बैठक की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राज्य और नगर निकाय डेंगू के मामलों में संभावित वृद्धि से निपटने के लिए तैयार हैं। जयपुर में 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन आज राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कारों के वितरण के लिए समाप्त होगा। ये पुरस्कार केंद्र और राज्य सरकारों तथा अन्य संगठनों द्वारा ई गवर्नेंस संबंधी उत्कृष्ट पहलों के लिए प्रदान किए जाते हैं। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज सुबह जम्मू से श्री अमरनाथ जी यात्रा के पहले जत्थे को रवाना किया। कश्मीर घाटी के बालतल और पहलगाम दोनों आधार शिविरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु बम बम भोले के नारे लगाते हुए एकत्रित हुए। 57 दिन की ये वार्षिक तीर्थयात्रा कल से कश्मीर के दोनों मार्गों पर आधिकारिक रूप से शुरू हो रही है और 28 अगस्त तक चलेगी। ये यात्रा अनंतनाग जिले के नुनवान पहलगाम मार्ग और गांदरबल जिले के बालतल से होकर है। तीर्थयात्रियों को केवल जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर ही यात्रा करनी होगी। मुगल रोड और धार रोड जैसे वैकल्पिक मार्गों पर

0: तीर्थयात्रा का आवागमन वर्जित है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से पंजीकरण जारी है और यात्रा से पहले लगभग 4 लाख तीर्थयात्रियों ने पंजीकरण करा लिया है। खेलों में फीफा विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को अतिरिक्त समय में 3-2 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। यूरी टेलीमेंस ने 125वें मिनट में पेनल्टी से गोल दागकर बेल्जियम को 3-2 की रोमांचक जीत दिलाई। राउंड ऑफ 32 के मैच में सह मेजबान अमरीका ने आज सुबह बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से हराकर अपनी पहली जीत दर्ज की। इस जीत के साथ ही अमरीका ने राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। अब अमरीका का मुकाबला बेल्जियम से होगा। वहीं एक अन्य मैच में कल इंग्लैंड ने कांगो को 2-1 से हरा दिया। अब 6 जुलाई को राउंड ऑफ 16 में इंग्लैंड का मुकाबला मैक्सिको से होगा। पुरुष क्रिकेट में भारत इंग्लैंड के बीच T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच कल बारिश के कारण रद्द हो गया। 5 मैचों की श्रृंखला में दोनों टीमें 0-0 से बराबरी पर हैं। बारिश के कारण इंग्लैंड अपनी पारी शुरू नहीं कर सका। श्रृंखला का दूसरा T20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में खेला जाएगा। वहीं ड्यूरेंट कप फुटबॉल का 135वां संस्करण 25 जुलाई से कोलकाता में शुरू होगा। ये प्रतियोगिता 23 अगस्त तक चलेगी। मैच रांची, इम्फाल, शिलांग और गुवाहाटी में खेले जाएंगे। 2 क्वार्टर फाइनल, 1 सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले कोलकाता में होंगे। ये पहला मौका है जब ड्यूरेंट कप के मैच झारखंड की राजधानी रांची में भी रखे गए हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने सामाजिक न्याय के अग्रदूत डॉक्टर सोनूलाल पटेल की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि डॉक्टर सोनूलाल ने असमानता और अन्याय के खिलाफ संघर्ष का सशक्त संदेश दिया। केंद्र सरकार ने असम में हाल ही में बाढ़ से निपटने के लिए पूरे सहयोग का आश्वासन दिया है। केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कल गुवाहाटी में राज्य सरकार के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में सबसे ज्यादा प्रभावित धेमाजी जिले सहित पूरे राज्य में बाढ़ से हुए आरंभिक नुकसान का जायजा लिया। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिन में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान पहुंचने की संभावना है। कर्नाटक के तटीय भाग, गुजरात, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में अगले 2 दिन में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सुबह बारिश के साथ हुई। शहर के कई हिस्सों में बारिश हुई, इससे दिल्लीवासियों को भीषण गर्मी से राहत मिली। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: धन्यवाद फरहत। कमर्शियल गैस एटीएफ में राहत, पेट्रोल, डीजल और एलपीजी पर इंतजार, जुलाई के पहले सप्ताह ही जेब पर पड़ेगा अच्छा असर, राजस्थान पत्रिका की खबर है। प्रदूषण हो या ना हो, 1 नवंबर से वर्क फ्रॉम होम, दिल्ली में ग्रैब की पाबंदियां 4 महीने तक स्वतः लागू रहेंगी, हिंदुस्तान सहित सभी अखबारों की आज सुर्खी बनी है। मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी का कार्यकाल बढ़ा, उत्तर प्रदेश सरकार ने 15 जुलाई तक बढ़ाई समय सीमा, वीर अर्जुन की खबर है। दोहा में मध्यस्थों के जरिए अमरीका और ईरान में बातचीत, देश बंधु की सुर्खी है। भारत पहुंची जापान की पीएम, रणनीतिक संबंधों पर जोर, पीएम मोदी के साथ शिखर वार्ता आज, दैनिक जागरण के विदेश पन्ने की खबर है। आयात के दम पर जीएसटी संग्रह 14% बढ़ा, वृद्धि की रफ्तार 13 माह में सबसे तेज, चुनौतियों के बावजूद विदेशी उत्पादों के बंपर आयात में जून में भरी सरकार की झोली, अमर उजाला के कारोबार पन्ने की ये खबर ध्यान खींचती है। आज और कल भी कभी भी एनसीआर में दस्तक दे सकता है मानसून, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में प्रवेश के बाद अगली मंजिल एनसीआर, हरियाणा और पंजाब, दैनिक जागरण ने यह खबर सचित्र दी है। अमर उजाला लिखता है, उत्तराखंड में भारी बारिश से केदारनाथ हेली सेवा स्थगित, उड़ाने डायवर्ट, चारधाम यात्रा में कुछ ही दिनों में अंतर दिखने का समाचार दैनिक भास्कर ने आंकड़ों सहित प्रकाशित किया है। 20 दिन में बदली तस्वीर दर्शनार्थियों की दौड़ में, केदारनाथ से आगे निकला बद्रीनाथ, छोटे शहरों में ऑनलाइन खरीदारी का क्रेज, कंपनियां बढ़ा रही हैं निवेश, नवभारत टाइम्स की सुर्खी है। वीर अर्जुन ने ग्राम सभा पर अपना संपादकीय प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, गांव की लोकतांत्रिक आत्मा क्या कागजों पर सिमट रही है, ग्राम सभाएं। लेख में कहा गया है कि ग्राम सभा को विकास कार्यों के सोशल ऑडिट का वास्तविक अधिकार मिलना चाहिए। जब लोगों को दिखेगा कि उनके द्वारा किए गए ऑडिट से भ्रष्टाचार पर रोक लग रही है तो उनकी भागीदारी स्वतः बढ़ेगी।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के साथ आज नई दिल्ली में वार्ता करेंगे। कर्मचारी भविष्य

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम सुर संगम। कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं पंकज उदास की गाई हुई गजलें।

0: क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चूरू के साथ। आकाशवाणी चूरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चूरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चूरू, आपकी पहचान हमारी आवाज।
1: आप सुन रहे हैं पंकज उदास की गाई हुई गजलें, कार्यक्रम सुर संगम में।

0: ये आकाशवाणी का प्रसारण है। आप सुन रहे हैं 100.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी चूरू।
1: अंतराल के बाद श्रोताओं पुनः स्वागत है आप सभी का सुगम संगीत के कार्यक्रम सुर संगम में। कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं पंकज उदास की गायी हुई गजलें।

आप सुन रहे हैं श्रोताओं सुगम संगीत के कार्यक्रम के ये अंतिम प्रस्तुति कार्यक्रम में आज आपने सुनी पंकज उदास की गायी हुई गजलें।

इस गजल के साथ ही श्रोताओं, आज का सुर संगम यही संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं FM 107 MHz पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 9 बजे हैं। अब आप सुनेंगे हमारे जयपुर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार मुख्य समाचार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज ब्यावर जिले के देवमाली गांव से वीबीजी रामजी योजना का शुभारंभ करेंगे जयपुर में चल रहे 29वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन में आज केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार प्रदान करेंगे राज्य में सड़क सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए आज से विशेष हेलमेट जागरूकता अभियान की शुरुआत और प्रदेश में मॉनसून के आज प्रवेश के आसार पूर्वी और दक्षिण पूर्वी इलाकों में तेज हवा के साथ बारिश की संभावना समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज ब्यावर जिले के मसूदा विधानसभा क्षेत्र के देवमाली गांव के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री यहां से वीबीजी रामजी योजना का शुभारंभ करेंगे इसके साथ ही वे जल जीवन मिशन के तहत लगभग 418 करोड़ रुपए की विभिन्न पेयजल परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे कार्यक्रम के दौरान 78 नई पेयजल टंकियों के निर्माण कार्यों का शिलान्यास भी किया जाएगा इन परियोजनाओं से क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत करने में मदद मिलेगी इससे पहले कल मुख्यमंत्री ने जयपुर में लोक मंथन 2026 के कर्टिन रेजर कार्यक्रम में शिरकत की कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने प्रदेशवासियों से राजस्थान की संस्कृति को राष्ट्रीय स्तर पर अधिक मजबूत पहचान दिलाने का आह्वान किया उन्होंने कहा कि राजस्थान शक्ति भक्ति विचार वीरता संस्कृति और लोक परंपराओं की भूमि है और हमें इस पर गर्व है मुख्यमंत्री ने कहा कि हम भारत के लोक विषय पर आयोजित हो रहा लोक मंथन भारतीय सभ्यता और संस्कृति के वैश्विक संवाद का माध्यम बनेगा
1: ये हमारे राजस्थान की एक बहुत प्यारी संस्कृति है आप जहां जाओगे वहीं आपको लगेगा कि उस संस्कृति में मनोहर हो स्वागत हो वो अपने आप में निराला मिलेगा और ये हमें आगे भी बढ़ाना चाहिए ये आयोजन राजस्थान को राष्ट्रीय तथा सांस्कृतिक केंद्र के रूप में अधिक प्रतिष्ठा प्रदान करेगा आइए हम सब मिलकर इस आयोजन को केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि भारत की सांस्कृतिक चेतना बौद्धिक शक्ति और राष्ट्र प्रथम के संकल्प को का महोत्सव बनाएं
0: कार्यक्रम में केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि लोक मंथन भारतीय सांस्कृतिक विरासत और मूल्यों से जुड़ने का एक महत्वपूर्ण मंच है इस अवसर पर लोक मंथन की वेबसाइट का लोकार्पण और एक पुस्तक का विमोचन भी किया गया जयपुर में आयोजित 29वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन का आज समापन होगा समापन अवसर पर राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे ये पुरस्कार ई गवर्नेंस के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले केंद्र और राज्य सरकारों तथा अन्य संस्थानों को प्रदान किए जाते हैं समापन एवं पुरस्कार वितरण समारोह के मुख्य अतिथि केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह होंगे सम्मेलन में आज डिजिटल गवर्नेंस तथा उभरती प्रौद्योगिकी से जुड़े विषयों पर 3 प्लेनरी सत्र आयोजित किए जाएंगे सम्मेलन में केंद्र और राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी उद्योग जगत के विशेषज्ञ स्टार्टअप्स तथा शैक्षणिक संस्थानों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा राजस्थान सरकार के संयुक्त तत्वावधान में किया जा रहा है राजस्थान पुलिस की इंटेलिजेंस शाखा ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए फंडिंग नेटवर्क संचालित करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है पुलिस इंटेलिजेंस के अतिरिक्त महानिदेशक प्रफुल्ल कुमार ने बताया कि आरोपित रफीक खान चांद शेख महाराष्ट्र के औरंगाबाद का निवासी है इस पर आईएसआई के लिए काम करने और जासूसी गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों तक धनराशि पहुंचाने का आरोप है उन्होंने बताया कि इस वर्ष जनवरी में दर्ज एक मामले की जांच के दौरान ये जानकारी सामने आई इस मामले में जैसलमेर निवासी एक व्यक्ति और असम के डिब्रूगढ़ एयरफोर्स स्टेशन पर कार्यरत एक कर्मचारी को गोपनीय सूचनाएं पाकिस्तानी हैंडलर तक पहुंचाने के

0: आरोप में गिरफ्तार किया गया था। राजस्थान उच्च न्यायालय ने राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की एडहॉक कमेटी को निलंबित कर दिया है। इसके साथ ही आईएएस अधिकारी भास्कर ए सावंत को एसोसिएशन का प्रशासक नियुक्त किया है। कार्यवाहक सीजे न्यायमूर्ति एसपी शर्मा और जस्टिस मनीष शर्मा की खंडपीठ ने ये आदेश एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। अदालत ने श्री सावंत को व्यक्तिगत रूप से एसोसिएशन की प्रबंध समिति के चुनाव 3 महीने में पूरा कराने के निर्देश दिए हैं। उन्हें 29 जुलाई तक अदालत को चुनाव कार्यक्रम से अवगत कराने को भी कहा गया है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। राज्य में सड़क सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए आज से विशेष हेलमेट जागरूकता और प्रवर्तन अभियान शुरू किया जा रहा है। राजस्थान पुलिस की ओर से 16 जुलाई तक चलने वाले इस अभियान के दौरान बिना हेलमेट और तेज गति से वाहन चलाने, अवैध पार्किंग करने तथा राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेस वे पर लेन नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अभियान के तहत दोपहिया वाहन चालक और पीछे बैठने वाले सहयात्री दोनों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा। ग्रामीण क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इससे पहले कल मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने सड़क सुरक्षा पर राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक की। उन्होंने सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए सभी संबंधित विभागों को आपसी तालमेल के साथ और जवाबदेह तरीके से काम करने के निर्देश दिए। एक देश एक चुनाव पर बनी संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष पीपी चौधरी ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने पर बल दिया है। नई दिल्ली में आयोजित एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए श्री चौधरी ने कहा कि एक साथ चुनाव कराने से शासन व्यवस्था मजबूत होगी, बार बार होने वाले चुनावों से होने वाली रुकावटें कम होंगी और अर्थव्यवस्था को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि एक साथ चुनाव कराने का विचार नया नहीं है और चुनाव आयोग, विधि आयोग तथा अन्य विशेषज्ञ निकायों ने समय समय पर इसकी सिफारिश की है।
1: राष्ट्र प्रथम की नीति सोच करके आज देश को वन नेशन वन इलेक्शन की जरूरत है कि लोकसभा और विधानसभा के सारे चुनाव साथ हों। ये सोच जो है बहुत लंबे समय से चल रही, लेकिन उसको बिल के रूप में लाने का काम पहली बार हुआ।
0: और अब मौसम। प्रदेश में आषाढ़ महीने की शुरुआत कुछ स्थानों पर बरसात के साथ हुई। राजधानी जयपुर में कई इलाकों में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश हुई। भरतपुर में कल सुबह बरसात के बाद दिन भर ठंडी हवाएं चलती रहीं। कोटपूतली बहरोड जिले के कोटपूतली, विराटनगर और पावटा में कल देर रात हल्की बरसात से मौसम सुहावना हो गया। भीलवाड़ा में भी देर रात तेज हवा के साथ कुछ देर झमाझम बादल बरसे। इस बीच आज भी राजधानी जयपुर सहित कई स्थानों पर बादल छाए हुए हैं तथा नम हवाएं चल रही हैं। हमारी हनुमानगढ़ संवाददाता ने बताया है कि वहां बादलों की आवाजाही से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार आज राज्य के पूर्वी इलाकों से मॉनसून दस्तक देगा। उदयपुर, कोटा, अजमेर और जयपुर के कुछ हिस्सों में गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। विभाग ने 4 और 5 जुलाई को कोटा तथा उदयपुर संभाग में कहीं कहीं भारी बारिश और एक दो स्थानों पर बहुत तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। वहीं पश्चिमी राजस्थान में कल से आंधी बारिश की गतिविधियां शुरू होने के आसार हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा वरिष्ठ अध्यापक माध्यमिक शिक्षा विभाग प्रतियोगी परीक्षा 2025 का आयोजन 12 से 18 जुलाई तक किया जाएगा। आयोग के अनुसार परीक्षा के प्रवेश पत्र परीक्षा तारीख से 3 दिन पहले आयोग की वेबसाइट और एसएसओ पोर्टल पर उपलब्ध कराए जाएंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज ब्यावर जिले के देवमाली गांव से वीबीजी रामजी योजना का शुभारंभ करेंगे। जयपुर में चल रहे 29वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन में आज केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 प्रदान करेंगे। राज्य में सड़क सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए आज से विशेष हेलमेट जागरूकता अभियान की शुरुआत और प्रदेश में मॉनसून के आज प्रवेश के आसार। पूर्वी और दक्षिण पूर्वी इलाकों में तेज बारिश के साथ बारिश की संभावना। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का चुरू केंद्र है। एफएम 100.7 मेगाहर्ट्ज पर हम बोल रहे हैं। समय 9:10 हुए हैं। प्रस्तुत है देशकान।

आप सुन रहे थे देशकान। ये आकाशवाणी का चोरू केंद्र है। समय 9:15 हुए हैं। प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम मरुवाणी।

चूरू केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.7 MHz पर। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में समय 9:30 हुए हैं। अब आप सुनेंगे फेसबुक कमेंट पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम दिल से दिल तक।

नमस्कार श्रोताओं, रेडियो साथी अंकिता के साथ आप सुन रहे हैं आज का कार्यक्रम दिल से दिल तक। आपके अपने कमेंटों के साथ, प्यारे प्यारे गीतों के साथ कार्यक्रम शुरू हो चुका है। आपका अपना दिल से दिल तक।

श्रोताओं, इस प्यारे से गीत के बाद अब बारी है आपके कमेंटों की। आपके ऐसे कमेंट जो सुनने में और अपने जीवन में अपनाने में बहुत ज्यादा अहमियत रखते हैं, ऐसे आपके कमेंट, आपके विचार इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सुनाने जा रहे हैं। सबसे पहला आपका जो कमेंट है वो हम लेने जा रहे हैं। हमारे साथी हैं विष्णु मिस्किन, रितिका, वाणी, चंद्रकला, गणेश, काशीनाथ, संगीता, आरोही, प्रियांशी, सोनी, दयानंद कॉलेज भवानीपेठ, सोलापुर, महाराष्ट्र से। ये वर्तमान की बात करते हैं। वर्तमान में जैसे कि बारिश का मौसम चल रहा है, ये हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इस मौसम में जितना ज्यादा ये सुहाना है, दिल को छूने वाला है, उतनी ही ज्यादा सावधानियों की जरूरत पड़ती है, क्योंकि इस मौसम में हम देखते हैं कि कभी भी बारिश हो जाती है और साथ ही कभी भी कीचड़ जो है वो जमा हो जाता है।

तो हमें हमेशा अपने साथ एक छाता, रेनकोट रखना चाहिए, साथ ही हमेशा संभल कर चलना चाहिए। अगला हम कमेंट लेने जा रहे हैं, साथी हैं हमारे हनुमानगढ़ से वेद और अलका मेटा। बहुत प्यारी बात लिखते हैं, हमारी कीमत इस बात और परिस्थिति पर निर्भर करती है कि हम किसके साथ हैं, यानी हमारी संगति। स्वर्ण आभूषण में जड़ित कोई भी अन्य धातु अथवा स्टोन जो भी है सोने के दाम में बिकती है। कुछ लोग हमें प्राकृतिक तौर पर मिलते हैं, जैसे हमारे पेरेंट्स, हमारे बच्चे जो भी हैं हमें प्राकृतिक तौर पर मिल रहे हैं, वही बाकी सब रिश्ते जो हैं वो हम चॉइस करते हैं। तो ध्यान रहे कि मछली बाजार से गुजरने पर गंदी बदबू आती है, वहीं इत्र की दुकान से लौटने पर हम महकने लगते हैं। संगति कुछ इसी प्रकार है। बहुत प्यारी बात लिखी है आपने। एक और कमेंट ले लेते हैं, अग्रसेन नगर शुरू से हमारे साथी लिखते हैं, प्रेजेंट की ही बात करते हैं, आजकल फर्जी लिंक जो है वो बहुत ज्यादा लोग इसके मामले में उलझे हुए रह जाते हैं और फंस जाते हैं, अपना कितना ही नुकसान कर लेते हैं। हालांकि इसके बारे में बहुत सी जानकारियां बार बार हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से भी बहुत बार बताते हैं, हमारे साथी बहुत अवेयर हैं जो इस बात को कह रहे हैं। फर्जी लिंक और झूठी बातों में जाल में मत आना, ओटीपी और पासवर्ड किसी को मत बताना, सतर्क रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, हर काम डिजिटल फ्रॉड में से बचकर बढ़ेगा आपका नाम। यानी ये कहना चाह रहे हैं कि हम इस दौर में आकर के इस चीज से बच तो नहीं सकते हैं, हमें डिजिटल तो होना पड़ेगा, लेकिन अगर किसी ने हमारी संपत्ति का या किसी ने हमारे पैसे का हमसे छीनने की कोशिश की है या फिर इसमें अपनी पूर्णता लगाई है तो हमें इससे बचना होगा, अपनी समझदारी से, अपनी सुरक्षा से। बहुत अच्छी और प्यारी बात आपने लिखी है, कमेंट और पढ़ेंगे इस गीत के बाद।

0: service.
1: Miss Seema?
0: Ji?
1: Abhi police station aayi hai. रुकिए वरना घर आ जाएंगे.
0: क्यों? लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए. आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो.
0: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1,00,000 दो बच जाओगे.
0: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए. अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो वरना बेटा जेल जाएगा.
0: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है. डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें. पुलिस, बैंक, आरबीआई इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें. उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें.
2: हेलो मम्मा.
3: आरबीआई कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए.
5: क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चूरू के साथ. आकाशवाणी चूरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक. कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान. तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चूरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान. आकाशवाणी चोरू, आपकी पहचान, हमारी आवाज.
6: श्रोताओं, अंतराल के बाद आइए फिर से कार्यक्रम दिल से दिल तक में आपके कमेंट को पढ़ते हैं. कमेंट हमें भेजा है गांव खारियाबास सांखू फोर्ट तहसील राजगढ़ से सत्यवीर जाखड़, राकेश, कृष्ण खजानी, प्रियंका, संजू, दीपांशु, आरव, शिवांश और समस्त जाखड़ परिवार. सड़क दुर्घटना के बारे में अवेयर करना चाहते हैं सभी को. कहते हैं गाड़ी चलाते समय सीट बेल्ट और बाइक चलाना हमें हमेशा याद रखना चाहिए. हेलमेट अवश्य पहनना चाहिए. दुर्घटना से देर भले कृपया वाहन धीरे चलाएं क्योंकि आपका इंतजार घर पे बहुत जने कर रहे हैं. बिल्कुल सही बात है क्योंकि हम जहां जल्दी पहुंचना चाह रहे हैं, क्या पता कुछ ऐसा हो जाए कि हम वहां पहुंच ही नहीं पाए. इससे बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा क्योंकि हमारा इंतजार बहुत लोग कर रहे होते हैं. इसलिए हमें सड़क सुरक्षा का पालन हमेशा करना चाहिए. अगला कमेंट है चंडीगढ़ से सतीश और बिमला नेजा का. बहुत अच्छी बात लिखते हैं. पीठ पीछे होने वाली बातों पर ज्यादा ध्यान मत दीजिए क्योंकि जब लोग बराबरी नहीं कर सकते तो बुरा ही करते हैं. आपकी बातें होने लगे तो व्यर्थ की बातों में विचलित होने की अपेक्षा ये समझ लेना चाहिए कि आप उनसे दो कदम आगे हैं. बातें भी उसी की होती हैं जिसमें कोई बात होती है. छोटी बातों को अनदेखा करके हमें लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहना चाहिए. बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि अपने लक्ष्य से विचलित हो जाए हम, इसीलिए इस तरह की बातें बनाई जाती हैं. अगला कमेंट है मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर रतनमाला का. मौत जीवन की सबसे बड़ी अटल सच्चाई है, इसे हमें हमेशा याद रखना चाहिए और जीवन में हमेशा प्रेम, दया और मुस्कान के साथ जीवन जीना चाहिए क्योंकि दौलत शोहरत यही रह जाती है, साथ हमारे कुछ नहीं जाता.

हमारे जाने के बाद याद किया जाता है तो सिर्फ हमारा व्यवहार, हमारे द्वारा दिया गया स्नेह और प्यार। समय का सम्मान हमें जरूर करना चाहिए, क्योंकि एक बार अगर समय बीत गया उसके बाद हमारे जो वचन है वो वापस हम ठीक करें या उसमें क्या करें वो एक अलग बात है, लेकिन हमेशा अपने प्रेम दया और मुस्कुराहट से सबका मन जीतना चाहिए। कमेंट एक और लेते हैं, सही रामनगर पीथीसर चुरू से हरि सिंह नायक, चिक्की रवि विवान लक्षिता और लक्षिता नायक का। वक्त इंसान का सबसे बड़ा शिक्षक होता है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है ये, क्योंकि वक्त जो सिखाता है वो कोई और नहीं सिखा सकता। ये बिना कुछ कहे बहुत कुछ सिखा देता है जो लोग कभी अपने लगते थे। वक्त उनके असली चेहरे दिखा देता है। मुश्किल दिनों में पता चलता है कौन साथ है और कौन सिर्फ बातों में हमें उलझा रहा है। वक्त ये भी सिखाता है कि उम्मीदें जितनी कम हो दर्द उतना ही कम होगा, और आखिर में इंसान समझ जाता है कि सबसे मजबूत सहारा खुद ही खुद का होता है। बहुत अच्छी बात। गाना सुनते हैं पहले प्यारा सा, और फिर उसके बाद फिर से चलेंगे आपके कमेंटों की तरफ।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: ये आकाशवाणी का प्रसारण है, आप सुन रहे हैं 100.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी चूरू।
4: अंतराल के बाद श्रोताओं, आइए फिर से पढ़ते हैं आपके द्वारा भेजे गए कमेंटों को। साथी हैं हमारे शादुल शहर जिला श्री गंगानगर से राम कुमार और चंद्रकला रेवार। मुस्कुराहट के बारे में बताते हैं कि जिंदगी अनमोल तोहफा, अगर हमें सबसे ज्यादा अनमोल तोहफा किसी को समझना है तो वो मुस्कुराहट है। इस जिंदगी को मुस्कुराकर हमें हमेशा जीना चाहिए। दुख और सुख जीवन के साथी होते हैं। हमेशा मुस्कुराना सिर्फ खुद को ही नहीं बल्कि हमारे आसपास के माहौल को भी खुशनुमा बना देता है। हम हमेशा देखते हैं कि हमारे आसपास के लोग हमेशा मुस्कुराती हुई चीजों को ही पसंद, हम खुद भी मुस्कुराते हुए लोगों को ही पसंद करते हैं, तो हम क्यों ना वैसे बने। अगला हमारा कमेंट है पद्मा टॉकीज नेपानगर मध्य प्रदेश से। सुदर्शन शाह, पल्लवी, प्रखर, कुशल, नीति, सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन, राजेंद्र जी शाह का, यदि मन में विश्वास हो हर मुश्किल भी आसान हो जाती है, क्योंकि मन में लिया गया विश्वास रूपी संकल्प हमारे द्वारा किए जाने वाले सत्कर्मों को पूरा करने में सदैव सहायता करता है। विश्वास ही परिकल्पना का संकल्प हमें एक नई ऊर्जा प्रदान कर सकता है जो हमें सदैव आगे बढ़ने के लिए अग्रसर करता है। बहुत अच्छी बात आपकी। अगला कमेंट हम पढ़ने जा रहे हैं, हमारे साथी है एडवोकेट वारिस अली खान संजय नगर ऐशबाग लखनऊ से। बुरी से बुरी परिस्थितियों में आशा नहीं छोड़नी चाहिए, आत्मविश्वास बनाए रखते हुए आशा को उम्मीद हमें थामना चाहिए। यह एक सकारात्मकता हमें प्रदान करता है और उम्मीद आशा हमेशा हमें हमारे लक्ष्य की ओर बढ़ाती है। बहुत प्यारी बात आपने लिखी है कम शब्दों में। अगला कमेंट हमारे पास है, ये लिखते हैं हमारा कर्म ही हमें हमारी वास्तविकता से अवगत कराता है। बिल्कुल, हमारा कर्म ही हमें बताता है कि हम किस प्रकार से आगे बढ़ सकते हैं। ये साथी है हमारे चौहान है, कोई केपीएस, शायद उन्होंने पूरा नाम अपना लिखा नहीं है। ये थे आप सभी के कमेंट आज के कार्यक्रम के। अगर और भी हमारे साथी हमारे कार्यक्रम में अपने कमेंटों को भेज करके अपने विचारों को शामिल करना चाहते हैं तो हमारे फेसबुक पेज पर हमें कमेंट जरूर भेजें। कार्यक्रम दिल से दिल तक में, हम आपको फिर से याद दिला दें, ये कार्यक्रम आपकी पसंद के गीत के लिए नहीं है, आपके कमेंटों के लिए है। और अगर आपके कमेंट उम्दा है, कुछ अलग है, बहुत ज्यादा काम आने वाले, हमारे जीवन में अपनाने वाले हैं, तो हम कार्यक्रम में जरूर शामिल करेंगे। आप हमें कमेंट भेजें हमारे फेसबुक पेज पर।

अभी आप सुन रहे थे फेसबुक कमेंट पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम दिल से दिल तक। हम आकाशवाणी के चुरू केंद्र से बोल रहे हैं FM 107 MHz पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में समय दिन के 10 बजे हैं। अब आप सुनेंगे हमारे मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम।

0: आज के मेहमान। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं जाने माने लेखक हरिशंकर राढ़ी से एक मुलाकात। आपसे बातचीत की है मंदाकिनी जोशी ने। आज सुनिए इस बातचीत का पहला भाग।
1: आज के मेहमान इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है वरिष्ठ साहित्यकार, कवि, कथाकार, व्यंग्यकार, गजलकार, निबंधकार, आलोचक, समीक्षा लेखक और अनुवादक संपादक हरिशंकर जी राढ़ी साहब को। हरिशंकर जी, आपका विविध भारती के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
2: जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका मंदाकिनी जी मुझे यहाँ बुलाने के लिए।
1: जी, कैसे हैं आप?
2: मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं?
1: हम भी अच्छे हैं और आज एक लंबी बातचीत आपसे करने वाले हैं।
2: जी अवश्य।
1: आप हमें सबसे पहले ये बताइए कि आपका जन्म कहाँ हुआ और आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई?
2: जी, मेरा जन्म सन 1964 में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के एक पिछड़े क्षेत्र में हुआ था। मेरी माता जी अध्यापिका थी और उन्होंने शिक्षा पर शुरू से ही बड़ा जोर दिया। मेरी प्राथमिक शिक्षा गांव में हुई, उसके बाद मैंने 12वीं तक की शिक्षा पास के कस्बे के इंटर कॉलेज में किया। उच्च शिक्षा के लिए मैं गोरखपुर विश्वविद्यालय की तरफ गया, वहां से मैंने बीए किया और सन 1988 में मैंने अंग्रेजी साहित्य में एमए किया। 1989 में मैंने पूर्वांचल विश्वविद्यालय से बीएड किया और उसके बाद दिल्ली में मेरी सरकारी विद्यालय में नियुक्ति हो गई। वहाँ मैं शिक्षण कार्य करता रहा और अभी 2 साल पहले मैं सेवानिवृत्त हुआ हूँ।
1: जी, तो आप एक अध्यापक के रूप में कार्य करते रहे।
2: जी,
1: तो इस अध्यापन के दौरान ही आपकी जो है साहित्य के प्रति रुचि पैदा हुई या ये रुचि पहले से ही थी, बचपन से ही?
2: मुझे जहाँ तक याद आता है कि मैं किशोरावस्था से ही साहित्य में रुचि लेने लगा था और कुछ तुकबंदियाँ, कुछ कविताएं, विद्यालय के लिए कुछ नाटक, इस तरह की चीजें लिखने लगा था। वो किशोर मन के व्यक्ति थी, देशभक्ति के गीत होते थे, विकास के गीत होते थे। लेकिन उसके बाद मैं गंभीर साहित्य से जुड़ा, पढ़ने लगा, बहुत सारे साहित्यकारों को पढ़ा और दिल्ली में आने के बाद मैंने औपचारिक लेखन शुरू कर दिया था।
1: जी, तो हरिशंकर जी, आप एक प्रखर भाषाविद हैं, अनेक पुस्तकों की लेखनी आपने की है, हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत भाषा के आप ज्ञाता हैं। क्या आपको कभी ऐसा लगा कि कोई विशेष भाषा आपके विचारों की गहराई को सीमित करती है या भाषा हमेशा विचारों की विस्तारक होती है?
2: जी नहीं मंदाकिनी जी, मुझे लगता है कि जितनी ही भाषाओं का ज्ञान हो, मनुष्य उतना ही मजबूत, उतना ही सुदृढ़ और उतने ही बड़ी सोच का हो जाता है।
1: जी,
2: तमाम भाषाओं को जानने की मेरी इच्छा थी, 3 भाषाओं पर ही मेरी कुछ पकड़ हो सकी है, जैसे हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत पर। मुझे बल्कि इस बात का कई बार मलाल होता है कि मैं 4-6 भाषाएं और क्यों नहीं जान सका। कुछ देशी बोलियों को भी मैं जानता हूँ ठीक से, उनको बोलता भी हूँ। तो भाषाएं पुल का काम करती हैं, जोड़ने का काम करती हैं और हर भाषा में कुछ न कुछ अतिरिक्त ज्ञान होता है, उसे प्राप्त करके अपने विचारों को, अपने साहित्य को आगे बढ़ा सकते हैं। ये हमेशा जोड़ती हैं, तोड़ने का काम नहीं करती हैं भाषाएं।
1: तो हरिशंकर जी, आपने तो व्यंग्य विधा, ललित निबंध और यात्रा संस्मरण लिखे हैं, ये लेखक बनने की शुरुआत कब और कैसे हो गई?
2: जी, जब मैं दिल्ली में आया तब तक मैं साहित्यिक पत्रिकाएं पढ़ता था, हरिशंकर परसाई को पूरा पढ़ चुका था।
1: अच्छा।
2: धर्मयुग, कादंबिनी जैसी पत्रिकाएं मैं नियमित रूप से पढ़ता था, पत्रिकाओं को पत्र लिखता था। सामान्यतः लेखन की शुरुआत यहीं से होती है। यहाँ पर मुझे लगा कि मुझे भी कुछ लिखना चाहिए और मैंने सबसे पहले एक कहानी लिखी और वो कहानी उस समय की प्रसिद्ध पत्रिका जो महिलाओं की थी, मनोरमा में प्रकाशित हुई सन 1994 में। मनोरमा पत्रिका की उस समय 1 लाख से कम प्रतियां नहीं निकलती थी और वो पढ़ाई लिखाई का युग था। तो उसमें जब पहली कहानी प्रकाशित हो गई तो मुझे लगा कि नहीं, जब मैं लिख सकता हूँ, मेरा बड़ा उत्साह वर्धन हुआ और वहां से मैं कहानियां लिखना शुरू कर दिया। बाद में दूसरी विधाओं में आ गया।
1: तो पहली कहानी कौन सी थी आपकी?
2: मेरी पहली कहानी थी जो मनोरमा में छपी थी, उसका शीर्षक था अपराजेय और वह एक ऐसे मुद्दे पर थी कि एक पीड़िता जो किसी संबंधी से बलात्कार का शिकार होती है और उसका एक रिश्तेदार बाद में उस

0: को स्वीकार कर लेता है और उनका जीवन बड़ा सुखद निकलता है। कहीं न कहीं से यह महिला के उत्थान के की ओर लेके जाते थे।
1: जी जी, जी। हरिशंकर जी, आपने लगभग 500 रचनाएं लिखी हैं, तो ये 500 रचनाएं अलग अलग विधाओं में हैं
0: जी,
1: और बहुत सारी राष्ट्रीय स्तर की पत्र पत्रिकाओं में आपकी कहानियां छपी हैं, उसके बारे में हमें थोड़ा बताइए।
0: जी, कहानियां मैंने जो लिखी वो बड़े लंबे दौर में लिखी। मैं कहानी विधा का इतना बड़ा प्रसारक तो नहीं हो पाया, लगभग 20 कहानियां लिखी मैंने, लेकिन जो कहानियां मैंने लिखी हैं वो कहानियां देश की प्रमुख पत्रिकाओं में जैसे हंस
1: जी,
0: वागर्थ, आजकल और तमाम दूसरी लघु पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई हैं। उन कहानियों को स्वीकृत मिली है, उस पर पत्र आए, पाठकों के फोन आए और वे कहानियां कहीं न कहीं स्त्री विमर्श से जुड़ी हुई हैं। ज्यादातर मेरी लिखी हुई कहानियां जो समाज को एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर ले जाती हैं, नकारात्मकता को दूर करके।
1: जी, तो आपने जिन पत्रिकाओं को नाम लिया ये लगभग राष्ट्रीय स्तर की पत्रिकाएं हैं, और मुझे ध्यान है कि हमारे घर में ये पत्रिकाएं आती थी और इन पत्रिकाओं को पढ़ा करते थे। उस समय हम जब कहानियां पढ़ते थे तो हमारी समझ से ऊपर निकल जाती थी, लेकिन धीरे धीरे पता चला कि राष्ट्रीय स्तर की बहुत ही सारगर्भित कहानियां इन पत्रिकाओं में स्थान पाती है। तो आपकी कौन सी कहानी आपके सबसे करीब है?
0: मेरे सबसे करीब कहानी या तो जो पहली कहानी थी अपराजेय, जो मनोरमा में छपी थी, या फिर दूसरी कहानी जो हंस में छपी थी जिसका शीर्षक था उसका आकाश।
1: उसका आकाश
0: जी, ये कहानी मुझे बहुत प्रिय रही है और इस कहानी ने पाठकों में एक विमर्श पैदा किया था। उस पर पत्रिका में भी अगले अंकों में उस पर समीक्षाएं आई थी, उसका जिक्र हुआ था और कुछ पाठकों ने मुझे निजी तौर पर पत्र लिख करके या फोन करके उस पर बात की थी।
1: जी, तो कहानी लिखते लिखते अचानक व्यंग्य विधा, ललित निबंध और यात्रा संस्मरण की ओर आना कैसे हुआ?
0: जी, ये सब मुझे लगता है कि एकदम स्वाभाविक रूप से हुआ था। कहानी लिखना मैंने शुरू किया लेकिन कहानियां मेरी यथार्थ पर आधारित होती थी। किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था
1: जी।
0: हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। भाषा पर 3 भाषाओं को पढ़ने से मुझे लगा कि थोड़ी पकड़ मेरी हो गई है और जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं, तो वो स्वाभाविक रूप से मैं व्यंग लिखने लगा। और ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई
1: जी।
0: और व्यंग में ही मैंने सबसे ज्यादा लिखा है और व्यंग में सबसे ज्यादा मेरी पुस्तकें आई हैं और व्यंग के विमर्श पर भी मैंने काम किया है
1: जी। तो समाज में इतनी विसंगतियां हैं राड़ी जी, लेकिन व्यंग लिखने का विचार आपके मन में सबसे पहले कब और कैसे आया होगा?
0: जी, एक घटना हुई थी राजनीतिक। उत्तर प्रदेश में एक सरकार गिरी थी और 2-3 राजनीतिक दलों को जोड़ करके, मैं नाम नहीं लूंगा, किसी मुख्यमंत्री ने एक सरकार बना ली और उसमें मंत्रियों की संख्या बहुत ज्यादा हो गई
1: जी।
0: कहीं न कहीं ये विसंगत थी कि हमारे प्रदेश के, हमारे देश के जो संसाधन हैं उन सबका प्रयोग इतने बड़े मंत्रिमंडल पर होगा और ये जोड़ तोड़ करके बनाया गया संगठन कभी चलेगा नहीं। वहीं से मेरा पहला व्यंग शुरू हुआ था और उसके बाद जब उसकी प्रशंसा हुई, उत्साहवर्धन हुआ, तो मैं और आगे लिखता गया
1: जी। यानी वो प्रोत्साहन आपको उस घटना के बाद मिला
0: जी।
1: तो राडी साहब, बातचीत तो हमारे बीच चल ही रही है, इस बीच एक आपकी पसंद का गीत सुन लिया जाए।
0: मुझे थोड़ा सा मेलोडी वाले गाने बहुत ज्यादा पसंद आते हैं, तो लता मंगेशकर जी का एक गीत है फिल्म ममता से, रहे ना रहे हम महका करेंगे।
1: क्या बात?
0: बड़ा सकारात्मक गीत है, मुझे बहुत अच्छा लगता है।
1: बहुत सुंदर क्लासिक गीत है ये, आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हरिशंकर जी, बात चल रही थी आपकी व्यंग्य लेखन पर, और आपने व्यंग्य विधा पर काफी लिखा है, जैसे कि युधिष्ठिर का कुत्ता और गिद्धों का स्वर्णकाल, अंधे पीसे और साहित्य के शनिदेव।
1: जी,
0: ये सबकी लेखन यात्रा के बारे में आप हमें थोड़ा बताइए।
1: जी, मैंने व्यंग लेखन 1998 से शुरू कर दिया था और मैं व्यंग में सबसे अधिक प्रभावित था हरिशंकर परसाई से।
0: जी,
1: व्यंग के पितामह हैं वो, और उनके रचनावली के 6 खंड हैं, वो मैं सारे पढ़ चुका था। पहले जब मैं व्यंग लिखना शुरू किया तो मेरे व्यंग बड़े विस्तृत होते थे, 3,000 से 3,500 शब्दों के। ज्यादातर वो व्यंग मेरे पहले व्यंग संग्रह युधिष्ठिर का कुत्ता में संग्रहित हैं। इसमें युधिष्ठिर का कुत्ता एक व्यंग है जिसमें कुत्ते को एक तरफ रख करके उससे तुलना करते हुए मानवीय स्वभावों की खिंचाई की गई है। कुत्ते में बहुत सारे अच्छे गुण होते हैं, लेकिन मनुष्य उन गुणों को ना लेकर के उनके दूसरे गुणों को लेता है। जैसे एक कुत्ता किसी दूसरे अपरिचित पर भौंकता है, यह सीधी सी बात होती है अगर उसकी मानसिकता को समझा जाए तो। जब वह नए कुत्ते पर भौंकता है तो उसे डर होता है कि कहीं ना कहीं ये मेरे साम्राज्य पर, मेरी टेरिटरी पर कब्जा करने आया है। यह प्रवृत्ति मनुष्य में भी पाई जाती है। और दूसरी बात यह होती है मनुष्य में कि थोड़े से स्वार्थ के लिए वे ये नहीं देखते कि किसके आगे पूंछ हिला रहे हैं। मनुष्य को मेरा मानना है कि हमेशा सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। और यह बात कि आप कहीं न कहीं से कुछ कुत्ते के दुर्गुणों को ले लें तो आपको सत्य के पथ से हटाती है। वैसे युधिष्ठिर का कुत्ता अपने आप में धर्म का प्रतीक है, लेकिन उससे हमारा कितना विचलन हुआ है, यह व्यंग जो मेरा है उसी को दिखाता है। जिस व्यंग को मैंने पूरी पुस्तक का शीर्षक बनाया, और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इस व्यंग संग्रह को पसंद किया गया।
0: जी,
1: उसके बाद दूसरा व्यंग संग्रह मेरा आया गिद्धों का स्वर्णकाल। इसके आप संकेत समझाएं, क्योंकि व्यंग जो होता है वह अभिधा में नहीं, लक्षणा में भी नहीं, बल्कि शब्दों की तीसरी शक्ति होती है व्यंजना।
0: जी,
1: जो बहुत कुछ संकेतों में कह जाती है या कई बार उल्टा अर्थ निकलता है उसको प्रदर्शित करता है। एक बड़ा

0: त्रासद समय हमने देखा कोरोना काल का
1: जी,
0: जिसमें एक तरफ तो महामारी थी, दूसरी तरफ हमने मनुष्य का बड़ा विकृत चेहरा देखा, जिसमें लोग एम्बुलेंस में कमाई कर रहे हैं, दवाइयों की चोरबाजारी हो रही है, लाशों के यहाँ वहाँ फेंका जा रहा है, लाशें एक तरफ गिर रही हैं। तो उस समय मेरे मन में यह विचार आया था कि ये तो हम गिद्धों के स्वर्ण काल में रह रहे हैं, ये गिद्धों का काल है, मनुष्यों का काल नहीं है। चारों तरफ मौतें हो रही थी और हम उस आपदा को अपने लिए अवसर में बदल रहे थे। तो ये पूरा संग्रह गिद्धों का स्वर्ण काल कोरोना काल में लिखे गए मेरे सारे व्यंग जितने उनका संग्रह है, और उस त्रासद स्थिति पर क्या क्या दृष्टिकोण रहे हैं इसको दिखाने का प्रयास किया गया है।
1: जी, जी।
0: तीसरा जो है वो सांधे पीछे हैं, ये हमारी व्यवस्था में मशीनरी में एक परंपरा है, ये शीर्षक अपने आप में व्यंग है, पूरा मुहावरा है कि अंधे पीसे कुत्ते खाएं। अंधे पीसे किस लिए काम कर रहे हैं, किसके लिए काम कर रहे हैं वो ये नहीं देख रहे हैं। प्रतीकात्मक रूप से किसी परिपाटी को चलाए जाना है, काम करने के लिए काम किया जाना है, उद्देश्य का पता नहीं है।
1: बिल्कुल।
0: और उसका दुरुपयोग करने वाले दूसरे हैं, जो कि कुत्ता जिन्हें समझा गया है या कहा गया है। तो इसमें आपको छोटे आकार के व्यंग मिलेंगे, क्योंकि अब तक आते आते पूरा साहित्यिक परिदृश्य बदल गया, हम आ गए मोबाइल युग में जिसमें लोगों पास समय नहीं है, छोटी रचनाएं पढ़ना चाहते हैं, कोई तीन पेज चार पेज का व्यंग या कोई भी रचना नहीं पढ़ना चाहता है। अखबारों ने पत्रिकाओं ने स्पेस कम कर दिया, अखबार और उसमें कालम खत्म हो गए, पत्रिकाएं बंद होती गई, तो थोड़ी थोड़ी जगह लगे देने लगे। तो इसलिए इस कारण से भी हमें एक रणनीतिक बदलाव करना पड़ा कि हम अपने आकार को समेटें। अब तो इसमें आपको जो व्यंग मिलेंगे 800 हजार 1200 शब्दों के मिलेंगे, उसमें इसका है। और साहित्य के सन्निधि मेरा चौथा व्यंग संग्रह है जो भी 2026 में ही आया है। इसमें सबसे बड़ी विसंगति यह है कि हम कह सकते हैं कि अगर चिकित्सक ही बीमार हो जाएगा तो रोगी का क्या इलाज करेगा। बहुत सारी विसंगतियां हम साहित्यकारों में भी हैं, और वही विसंगतियां हैं जो मनुष्य में पाई जाती हैं, पाखंड की, उतार चढ़ाव की, गिराने की, जगाड़ने पछाड़ने की, उसको केंद्रित रखते हुए है व्यंग साहित्य का संदर्भ। यह भी इस पूरे संग्रह का एक व्यंग है। उसमें और भी जो व्यंग है वो राजनीतिक सामाजिक घटनाक्रमों पर है। कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहूंगा, व्यंग ये देखता है कि समाज में क्या होना चाहिए और क्या है,
1: हो रहा है,
0: आदर्श और यथार्थ के बीच की जो स्थिति है उस खाए को थोड़ा सा कड़े शब्दों में पाटने का प्रयास जब किया जाता है तो व्यंग होता है, और उसकी झलक आपको साहित्य के सन्निधियों में मिलेगी।
1: जी, तो व्यंग्य में अगर हम बात करें परसाई युग से अब तक कितना बदलाव आया है, आप क्या महसूस करते हैं?
0: जी, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है। व्यंग देखिए परसाई के पहले से है, लेकिन परसाई को हम व्यंग का औपचारिक अधिष्ठाता कह सकते हैं। व्यंग सबसे अधिक मिलता है कबीर में, और हम व्यंगकार दावा करते हैं हम कबीर के वंशज हैं, हालांकि कबीर का वंशज होना आसान काम नहीं है। जिस निर्भीकता से कबीर ने कहा है वो निर्भीकता बहुत कम लोगों में मिलती है। कबीर ने कहा, तुलसीदास के ग्रंथों में भी व्यंग मिलता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी व्यंग लिखा है, लेकिन परसाई ने व्यंग को स्थापित किया।
1: जी।
0: उस समय की परिस्थितियां कुछ और थी, उस समय सामाजिक पतन इतना नहीं हुआ था जितना अब हो गया है।
1: जी।
0: राजनीतिक विसंगतियां इतनी नहीं बढ़ी थी जितनी अब बढ़ी हैं, लेकिन परसाई ने उस समय बहुत दूरदर्शिता दिखाते हुए इन चीजों को पकड़ा था। परसाई के समय में एक आजादी थी कि व्यंग को लंबा लिख सकते थे। कितना भी लंबा आप लिखेंगे, पत्रिकाएं छापेंगे, उस समय धर्मयुग जैसी पत्रिकाएं थी जिन्होंने व्यंग को नियमित रूप से प्रकाशित किया। धर्मवीर भारती जैसे संपादक थे जो साहित्य के बहुत बड़े जौहरी थे, बहुत बड़े पारखी थे। अब तो दुखद वैसी चीजें नहीं रह गई।
1: पाठक भी वो एक बड़ा वर्ग था, पाठक का।
0: हाँ, बहुत बड़ा वर्ग था। हाँ, बहुत, हाँ, बहुत बड़ा वर्ग था पाठक का। और व्यंग साहित्य में उन दोनों स्थापित हो रहा था, लोगों को नई चीज मिल रही थी, मनोरंजक चीज मिल रही थी। तो परसाई के समय एक तो व्यंग की लंबाई ज्यादा हुआ करती थी, उस समय की स्थितियां कुछ दूसरी थी। अब धीरे धीरे विसंगतियां बढ़ी हैं, विसंगतियों के प्रकार बढ़े हैं, समय कब हुआ है तो व्यंग का आकार कम हुआ है। और एक चीज मुझे थोड़ा सा नकारात्मक लगती है, समाज का शिक्षित होना तो बहुत ही आवश्यक है, लेकिन उच्च स्तरीय साहित्य सभी लोग नहीं लिख पाते हैं। जैसे साहित्य की हर विधा में शौकिया लेखकों की भीड़ बढ़ी है, उसी तरह व्यंग में भी लोग आ गए हैं जिनको व्यंग की समझ नहीं है। तो थोड़ा सा एक चुनौती बढ़ी है कि व्यंग को आप परसाई के स्तर पर क्या रख पा रहे हैं, वो अब थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है।
1: जी, बिल्कुल, जी। बिल्कुल। क्योंकि जगह जगह एक लेखक वर्ग इकट्ठा हो गया है, हर शहर में लेखक वर्ग है और व्यंग्य विधा में हाथ आजमा रहा है। अब कितना वो व्यंग्य है, कितना क्या है, कई बार डिजिटल दुनिया में जब हम देखते हैं मीम्स बनते हैं, हम उसे भी

0: समझ लेते हैं और
1: जी
0: लेखन यात्रा शुरू कर देते हैं।
1: जी
0: तो आपसे अगला सवाल मैं करूंगी, लेकिन उससे पहले आपकी पसंद का एक गीत हम सुन लेते हैं राडी जी।
1: जी जरूर जरूर, मुझे गीत बहुत पसंद है। मैं संगीत प्रेमी व्यक्ति
0: जी
1: हूं और मुझे एक गीत बहुत पसंद है, किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी का, आराधना फिल्म से। कोरा कागज था ये मन
0: मन
1: मेरा,
0: मेरा
1: लिख लिया नाम ये
0: इसमें
1: तेरा।
0: तेरा। तो चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
1: जी

0: एक कोरा कागज लेखक के सामने भी होता है और तभी वो अपने मन की बात उस कागज पर लिखता है। राडी साहब, व्यंग की बात हम कर रही हैं तो व्यंग में हास्य की उपस्थिति कितनी जरूरी है, क्या मानते हैं आप, और क्या व्यंग्य हास्य के बिना नहीं हो सकता?
1: जी, आपने बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा मंदाकिनी जी। यह हमारे व्यंगकारों में भी विमर्श का विषय रहता है। आप अगर कबीर के व्यंग देखें, जो कि स्वतंत्र व्यंग नहीं है, तो कबीर के व्यंग में कहीं आपको हास्य नहीं मिलेगा, बड़ी चुभन मिलेगी।
0: जी,
1: भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के व्यंग हैं, उसमें हंसी मिलती है, हास्य है। परसाई के कुछ व्यंग ऐसे हैं जिसमें खूब हास्य है।
0: जी,
1: जैसे आप रानी नागफनी की कहानी ले लीजिए, वो उपन्यासिका है। इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर, उसमें भी खूब व्यंग है। इंस्पेक्टर माता दीन के बाद इंस्पेक्टर राम बाबू की ट्रेनिंग, राम सिंह की ट्रेनिंग, उसमें भी हास्य है। लेकिन परसाई के भी यही ऐसे कई व्यंग हैं जिसमें हास्य नहीं है।
0: जी,
1: प्रारंभिक दौर में हास्य व्यंग के साथ जुड़ा था तो अच्छा लगता था, धीरे धीरे हास्य का स्तर गिरता गया। हालांकि मैं हास्य को बड़ा जरूरी मानता हूँ जीवन के लिए। हास्य एक मान्यता प्राप्त रस है हमारे यहाँ साहित्य में, हास्य होना जरूरी है। हास्य अगर उचित नहीं है, उसकी संगति ठीक नहीं है, तो वह व्यंग की तीव्रता को, गहनता को कम करता है।
0: जी,
1: आपने मीम्स की बात की है। मीम्स हमको एक सेकंड के लिए मुस्कुराने के लिए विवश करते हैं, लेकिन हम अगले मिनट भूल जाते हैं। व्यंग वही बहुत दिन तक प्रभावशाली रहता है जिसमें गंभीरता होती है और हास्य कम होता है। अगर स्वाभाविक हास्य आ गया तो उससे परहेज नहीं करना चाहिए, लेकिन यह जबरदस्ती हास्य डाला गया है या यह समझा गया है कि व्यंग हास्य के बिना नहीं हो सकता है, तो मेरे ख्याल से यह भ्रम है। हास्य और व्यंग दो चीजें अलग अलग हैं, ये एक हो सकती हैं, लेकिन इनकी संगत, इनका साज ठीक होना चाहिए।
0: जी, बहुत बड़ी बात कही आपने, बिल्कुल सही कहा। तो राडी साहब, जब अभी हम बात कर रहे थे कि डिजिटल युग में जहां सोशल मीडिया पर मीम्स और छोटे छोटे व्यंग हमें देखने को मिलते हैं, पढ़ने को मिल रहे हैं, वहां छोटे छोटे व्यंग चल रहे हैं, ऐसे में पारंपरिक व्यंग के लेखन का भविष्य, ये कैसा लगता है आपको?
1: जी, पारंपरिक व्यंग का भविष्य, यानी हम जिसे कहें कि लंबाई वाले व्यंग,
0: जी,
1: जो 4,000-5,000 शब्दों के होते थे या उससे बड़े भी होते थे, या 3,000 का भी मान लें, उनकी मांग घटती जा रही है। और खास करके कोई भी लेखक सोचता है कि जो लिख रहा है वो पाठकों के सामने जाए, क्योंकि लिखा जा रहा पाठक के लिए, जनता के लिए। उन तक पहुंचाने वाले जो माध्यम है, खास करके समाचार पत्र, उन्होंने इसकी लंबाई कम कर दी है। अब वो यहां तक हो गया है कि 250-300 शब्दों का व्यंग मांगते हैं। और कोई व्यक्ति अगर व्यंग लिख करके रखता जाएगा, पाठक तक नहीं पहुंच रहा है, तो उसके लिखने का कोई प्रयोजन नहीं है। इसलिए जो लंबे व्यंग हैं, वो कुछ पत्रिकाएं छाप तो रही हैं, या फिर आप उनको संग्रह में डाल सकते हैं। आज का जीवन इतना तेज हो गया है कि लोग लंबी रचनाएं देखकर पढ़ने से कतराते हैं।
0: जी।
1: हालांकि असली व्यंग उन लंबी रचनाओं में ही होता है, ठीक उसी तरह से जैसे टेस्ट मैच होता है।
0: जी।
1: आप लंबी रचना में व्यंग कितना संभाल पाते हैं, ये देखने वाली बात होती है। मुझे नहीं लगता है कि बहुत लंबे व्यंग भविष्य में ज्यादा चल पाएंगे। हाँ, यह है कि बहुत छोटे भी उसकी तीव्रता को कम करते हैं, मध्यम आकार के व्यंग चलते रहेंगे। एक चीज और मैं जोड़ना चाहूंगा कि व्यंग में उपन्यास काफी लिखे गए हैं, लेकिन आज तक श्रीलाल शुक्ल के राग दरबारी का मुकाबला कोई कर
0: नहीं पाया। जी,
1: ऐसा लगता है कि यह व्यंग अपने आप लिखा गया था, क्योंकि वैसा व्यंग उपन्यास कोई लिख नहीं पाया। कुछ और लोगों ने, हमारे समय के व्यंगकारों ने व्यंग उपन्यास लिखे हैं। ज्ञान चतुर्वेदी ने 7-8 व्यंग उपन्यास लिखे हैं। कई और लोगों ने लिखा है, नाम किसका लें किसका ना लें। वो श्रीलाल शुक्ल के राग दरबारी की तीव्रता उसमें नहीं आ पाई है। इसलिए मुझे लगता है कि उपन्यास तो चल जाएंगे अगर उसमें व्यंग के तत्व होंगे, लेकिन स्वतंत्र व्यंग बहुत लंबे भविष्य में चलने वाले नहीं है। थोड़ा मध्यम आकार के व्यंग चलते रहेंगे, मेरा अनुमान ऐसा है।

0: क्योंकि समय कम है लोगों के पास, और
1: जी
0: आप जैसे एक कैरिकेचर आता था या कार्टून एक कोने में अखबार के आता है,
1: जी
0: तो हम उसे देखकर और उसमें जो लिखा गया उसे पढ़कर मुस्कुराकर ही हम इतिश्री कर देना चाहते
1: जी
0: हैं,
1: जी
0: क्योंकि गागर में सागर हमें उस कार्टून में मिल जाता है।
1: जी
0: तो आजकल का समय कुछ ऐसा

0: ये आपने वाकई बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। व्यंग बहुत अधिक विवेक मांगता है। मुझे लगता है कि साहित्य की सभी विधाओं में सबसे चुनौतीपूर्ण, सबसे मुश्किल व्यंग लिखना होता है। इसमें विवेक की बहुत अधिक आवश्यकता होती है, क्योंकि यह भी कहा जाता है कि व्यंग दोहरी मार करता, दुधारी तलवार है। व्यंग हमेशा सत्ता के विरुद्ध लिखा जाता है, लेकिन आजकल कुछ लोगों को भ्रम है कि सत्ता का अर्थ केवल किसी राजनीतिक दल से है जो किसी देश या प्रदेश में सत्तासीन है। वह सत्ता तो है निसंदेह, लेकिन राजनीतिक सत्ता के अलावा बहुत सारी सत्ताएं हैं। धर्म की सत्ता है, पाखंड की सत्ता है, अंधविश्वास की सत्ता है, सांप्रदायिकता की सत्ता है, यहाँ तक कि पंचायतों की भी सत्ता है, और कई बार परिवार में मुखिया की भी सत्ता हो जाती है
1: जी।
0: तो अगर सत्ता कोई विसंगतिपूर्ण कार्य कर रही है, जो समर्थ है वह विसंगतिपूर्ण कार्य कर रहा है, तो व्यंग उस पर लिखा जाएगा। व्यंग कभी भी किसी शोषित, वंचित, पीड़ित पर नहीं लिखा जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई भूखा व्यक्ति एक रोटी चुरा लेता है तो वह व्यंग का पात्र नहीं है, वह सहानुभूति का पात्र है। जो लोग समाज को देख रहे हैं, संभाल रहे हैं, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है, अगर उनके चरित्र में कहीं विसंगति है, पाखंड है, उनके विरुद्ध व्यंग लिखा जाना चाहिए। व्यंग सत्ता के खिलाफ होगा, लेकिन वह सत्ता जो जनता के या आम जन के खिलाफ होती है, उस पर व्यंग लिखा जाना चाहिए। कमजोर पर कभी भी व्यंग नहीं लिखा जाना चाहिए।
1: जी, जी। यानी कि विषय का चयन भी इसी आधार पर होता है कि हमने क्या चुना है।
0: जी, और मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा कि आप जो व्यंग लिखा है उसका उद्देश्य क्या है। व्यंग हमेशा उद्देश्यपूर्ण होता है। आप किसी ऐसी चीज पर व्यंग लिख दें, बादल पर व्यंग लिख दें, बादल उसको सुनने नहीं आ रहा, समझने नहीं आ रहा है। किसी पशु पर लिख दें, वो सुनने नहीं आ रहा, समझने, उसमें सुधार नहीं होना है।
1: मतलब वैचारिकता होनी चाहिए और वैचारिक बातचीत होनी
0: चाहिए। उसको आप प्रतीक मान करके लिख सकते हैं। किसी पशु को या किसी भी तत्व को आप प्रतीक बना करके व्यंग लिख सकते हैं, और वो संकेतों में अपनी बात को गंभीरता पूर्वक कह जाए। तो व्यंग हमेशा उद्देश्य पूर्ण होना चाहिए, निरर्थक निर्देश नहीं होना चाहिए। साहित्य तो कोई भी नहीं होना चाहिए निर्देश।
1: जी, जी। हरिशंकर जी, बात चल रही थी आपकी व्यंग लेखन पर और बातचीत तो हमारे बीच चल ही रही है।
0: जी,
1: तो एक गीत सुन लिया जाए इस बीच।
0: जी जरूर। कुदरत फिल्म का गीत है, किशोर कुमार जी का ही। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना।
1: क्या बात है?
0: ये मैं चाहूंगा कि आप सुनवाए।
1: आइए सुनते।

0: हरिशंकर जी, तो आप शुरू में कहानियां लिखते थे, आपने कहा कि आप महिला प्रधान कहानियां लिख रहे थे, तो आपने एक गंभीर साहित्य के बजाय व्यंग्य विधा को क्यों चुना?
1: यह आपकी बात सही लगती मुझे कि यह भी एक विसंगति है या विडंबना है कि समाज में कुछ लोग अभी ऐसे हैं, साहित्यकारों में हैं, आलोचकों में हैं, जो व्यंग्य को गंभीर कर्म नहीं मानते। और मंदाकिनी जी, आपको जानकर के हैरानी होगी कि साहित्य में अभी व्यंग पर कोई बड़ा विमर्श या कोई बड़ा आलोचक नहीं हुआ है।
0: जी।
1: व्यंग का अभी कोई आलोचना शास्त्र नहीं बना है, क्योंकि कई बार तो कहा जाता है कि व्यंग बिरादरी से बाहर है। लेकिन व्यंग मेरा मानना है कि बहुत ही गंभीर किस्म का लेखन होता है, बहुत गंभीर साहित्य होता है। उसमें आपको भाषा की पकड़, कहने का ढंग और जो व्यक्ति समाज को हानि पहुंचा रहा है उसको इस प्रकार से प्रहार करना होता है कि वो तिल मिला करके सुधार की तरफ अग्रसर हो।
0: जी, जी।
1: तो मुझे लगता है कि समाज को, साहित्य को सुधारने के लिए व्यंग का होना बड़ा जरूरी है, बशर्ते उसकी भाषा संतुलित हो, गहन हो और अपने लक्ष्य पर सीधा प्रहार करती हो, लेकिन वो प्रहार व्यक्तिगत रूप से नहीं होना चाहिए। तो मेरा मानना है कि व्यंग एक बहुत गंभीर साहित्यिक लेखन है, वो किसी विधा से कमजोर नहीं है।
0: जी, तो हम समझ लेते हैं कि व्यंग्य केवल एक हास्य की विधा है।
1: जी।
0: और स्त्री प्रधान कहानियां या एक गंभीर लेखन अलग किस्म का लेखन होता है।
1: जी।
0: तो इस भ्रम जाल को आपने हटाया है और मुझे लगता है कि जो श्रोता वर्ग आपको सुन रहा है इस बदलाव को, इस अंतर को समझ पाएगा।
1: जी, जी।
0: तो क्या पाठकों का व्यंग्य को समझने का नजरिया बदला है?
1: पाठकों के साथ एक समस्या ये होती है कि पाठक लेखक तो होता नहीं है, उसे हम जो देंगे वो वही लेगा। अगर उसके सामने अच्छे व्यंग जाएंगे तो अच्छे व्यंग पढ़ेगा, अगर उसके सामने खराब व्यंग जाएंगे, खराब व्यंग की श्रेणी में मैं उन व्यंग को रखता हूँ जो कि सीधे सीधे किसी पर आरोप लगा देते हैं, सीधे शब्दों में शिकायत कर देते हैं, सीधे किसी दल, किसी पार्टी का नाम लेकर के उस पर आक्षेप लगाते हैं, ये व्यंग नहीं होता है। दुर्भाग्य की बात है कि कुछ लोग आजकल ऐसा व्यंग लेखन कर रहे हैं। व्यंग हमेशा अंदर की सतह में जाके मार करता है, व्यंग प्रवृत्ति पर होता है, व्यक्ति पर नहीं होता है। यह बात पाठक को समझाना होगा और समझाने की जिम्मेदारी हम व्यंगकारों की है, पाठक की नहीं है। हम उसका स्तर उठा रहे हैं कि गिरा रहे हैं, यह हमें देखना है। दूसरा, थोड़ा सा मैं जो हमारे समाचार पत्र के संपादक हैं, पत्रिकाओं के संपादक हैं, उनको भी जिम्मेदारी देना चाहूंगा, वो किस तरह का व्यंग उनके पास पहुंचा रहे हैं, क्योंकि पाठक तो पहुंचाने सीधे जाएगा नहीं, वो संपादक को देगा। तो ये विवेक संपादक में होना चाहिए कि वह जिस व्यंग को प्रकाशित कर रहा है उसकी भाषा, उसकी शैली, उसका प्रहार कितना है। हाँ, ये जरूर है कि आज के जमाने में जब पाठक के सामने मोबाइल है, सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, उसको अपनी पसंद की चीज़ तुरंत मिलती जा रही हैं, तो वह उतना महत्व लिखित साहित्य को नहीं देता है, लेकिन अगर उसको अच्छा साहित्य मिलेगा तो वो पढ़ेगा।
0: जी, जी। एक लेखक को कहते हैं कि यायावर होना चाहिए।
1: जी।
0: और उसकी जो यायावरी है, उसका जो घुमक्कड़पन है, उसे उसके दिमाग को खोलता है, उसकी लेखनी को खोलता है। तो क्या एक लेखक को यायावरी का शौक होना चाहिए?
1: जी, मंदाकिनी जी ने, आपने तो मेरी बात का आधा उत्तर खुद ही दे दिया। लेखक नहीं, मुझे लगता है कि मनुष्य मात्र को यायावर होना चाहिए, घूमना चाहिए। हम किसी चार दीवारी में कैद होकर रह जाएंगे तो हमारे विचारों का, हमारे दृष्टि का विकास नहीं होगा और हमारे यहाँ एक

0: हाविरा है और वो व्यंग्यात्मक मुहावरा है कि कुएं का मेढक होना।
1: जी
0: ये मुहावरा अपने आप में व्यंग है, कुएं का मेढक होना। तो जब तक आप अपने परिवेश से बाहर नहीं निकलेंगे, यात्राएं नहीं करेंगे, दूसरी संस्कृति का आदान प्रदान नहीं करेंगे, तब तक आपका वैचारिक प्रवाह गतिमान नहीं होगा। आप जब घर से बाहर निकलते हैं, देखते हैं, समझते हैं, घूमते हैं, तो आपको नई संस्कृति, नए लोग, नई भाषा का दर्शन होता है और वहाँ पर आपको बहुत सारे विचार मिलते हैं। उन्हीं विचारों का पल्लवन हम साहित्य के रूप में करते हैं। हम कैद होकर के केवल मानसिक उड़ान से इतना अच्छा साहित्य नहीं लिख सकते हैं जितना कि हम घूम करके देख करके कर सकते हैं।
1: जी।
0: तो मेरा मानना है कि एक लेखक के लिए यायावरी बहुत ही आवश्यक है।
1: लेकिन जो लोग यायावरी नहीं कर पाए, जो लेखक यायावर नहीं बन पाए, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? उनका लेखन किस तरह का रहा होगा? क्या उन्होंने उस बात को महसूस किया होगा, उस अभाव को, कि अगर वो यायावरी करके ये लेखन करते या ये रचनाएं करते तो शायद और ज्यादा दर्शकों के या पाठकों के करीब होते?
0: हमारे विश्व साहित्य की बात करूं मैं, तो कुछ लेखक या कवि हम कहें बहुत ही मेधावी हुए हैं, या उनको आप कह सकते हैं उनको प्रकृति प्रदत्त वरदान था। दिव्यांग थे जैसे हमारे यहाँ सूरदास
1: जी,
0: होमर जैसे कवि, इन लोगों ने तो यात्राएं नहीं की थी, लेकिन निश्चित रूप से इनकी जो छठी इंद्रिय थी वह कहीं हम लोगों से बहुत आगे थी।
1: जी, जी।
0: ऐसे लोग अपवाद स्वरूप होते हैं, हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते हैं। अगर उनको हटा दिया जाए, ऐसे लोगों को हटा दिया जाए, तुलनात्मक अध्ययन किया जाए, तो जो लोग समाज में खुले रहे हैं, घूमते रहे हैं, यात्राएं करते रहे हैं, उनके लेखन में जो विविधता मिलती है वो उन लोगों के लेखन में नहीं मिलती है। प्रायः अपवाद हो सकते हैं जो एक जगह स्थिर रहे हैं। यायावरी साहित्य में आप महापंडित राहुल सांकृत्यायन का नाम जरूर लेना चाहेंगे।
1: जी जी।
0: जिन्होंने अथातो घुमक्कर जिज्ञासा लिखी, जिन्होंने पूरे तिब्बत से लेकर के दक्षिण भारत यूरोप तक यात्राएं करके ग्रंथों को इकट्ठा किया, और मुझे लगता है कि यायावरी का उनसे बड़ा प्रेरणा स्रोत दूसरा कोई नहीं हो सकता है, और यायावरी के कारण ही उनको इतनी भाषाएं आई और उन्होंने इतना बड़ा साहित्य लिखा। तो मुझे लगता है कि विचारों का पल्लवन
1: से होता है। दैनिक जीवन में भी हम जितना ज्यादा घूमते हैं, तो कई बार आपने देखा होगा कि जो लोग नौकरी करते हैं और जगह जगह ट्रांसफरेबल जॉब होती है, वो लोग ज्यादा खुलेपन से जी पाते हैं, बजाय पूरी जिंदगी एक ही शहर में जो लोग निकाल देते हैं।
0: निश्चित रूप से, निश्चित रूप से।
1: तो जब बात रचनात्मकता की आती है, तो घूमना और घूमने के साथ साथ आपको हर एक चीज को समझना बहुत ज्यादा मदद करता है। तो राडी साहब, आपकी यायावरी पर भी अब हम चर्चा करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले आपकी पसंद का एक गीत सुन लेते हैं।
0: जी जरूर।

0: के तले।
1: आपकी जो किताब आई है दर्शन दृष्टि और पांव
2: जी,
1: आपकी यायावरी है इसमें, एक यात्रा संस्मरण है आपका ये, इसके बारे में आप बताइए हमें।
2: जी, यायावरी मेरी प्रारंभिक प्रवृत्ति रही है और घूमना मुझे शुरू से पसंद था। यहाँ तक कि जब मैं अनौपचारिक यात्राएं करता था या मैं लेखक नहीं था, लेखक बनने के बाद मुझे लगा, यात्राएं करता रहा, कि इनको लिखना चाहिए, संस्मरण के रूप में इनको दर्ज किया जाना चाहिए। और जब मैंने यात्रा संस्मरण लिखना शुरू किया था तो आज की तरह तकनीक नहीं हुआ करती थी, तब यात्राएं मुश्किल थीं और गूगल बाबा नहीं थे, या रहे भी होंगे तो सामान्य जन तक पहुंच नहीं थी उनकी
1: जी।
2: किस जगह जाना है उसके लिए बड़ा श्रम करना पड़ता था, कैसे जाएंगे, कैसे पहुंचेंगे, ये सब देखना पड़ता था। और दूसरी बात यह थी कि जैसे आजकल है तो आप देख लें, तमाम ऐसे टीवी चैनल्स हैं जो जगहों को दिखा देते हैं, तमाम लोग व्लॉगर्स हो गए हैं जो यात्राएं दिखाते हैं।
1: बिल्कुल,
2: इसमें आप ऐसे भी सोच सकते हैं, फिर इस जमाने में यात्रा संस्मरण की क्या जरूरत है। लेकिन मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगा कि यात्रा संस्मरण एक साहित्यिक विधा है और साहित्यिक विधा केवल मनोरंजन नहीं करती है, मनुष्य को सिखाती है, उसके हित की बातें बताती है। जब एक साहित्यकार यात्राएं करता है खास करके, तो वहां वो जिस जगह पे गया है वहां की संस्कृति, वहां की सभ्यता, वहां के खान पान, वहां के लोग को समझता है और समझ करके वह उनको अपने संस्मरण में दर्ज करता है। अगर हम उनको आज के जो सोशल मीडिया के साधन उनसे जोड़े तो आपको सूचनाएं तो मिल जाएंगी
1: जी,
2: लेकिन वह रस जो है जो संस्मरण में मिलता है, साहित्यकार के संस्मरण मिलता है, वो इसमें नहीं मिलेगा। मेरा मानना है कि यात्रा संस्मरण केवल सूचनात्मक नहीं होता है, वो रचनात्मक होता है। वह लोगों को एक दृष्टि देता है और जो उसको पढ़कर की यात्रा करता है उसकी भी दृष्टि खुलती है कि मैं जिस जगह पे जा रहा हूँ मुझे क्या देखना है, मुझे क्या समझना है। तो इस तरह के जो यात्रा संस्मरण होते हैं वो संस्कृति को जोड़ते हैं, सभ्यता को जोड़ते हैं और जोड़ते हुए साहित्य को समृद्ध करते हैं। ये काम मैंने अपने यात्राओं में किया है और यात्रा संस्मरण किया है मैंने, मतलब हर तरह की यात्राएं की हैं मैंने, प्राकृतिक स्थलों की यात्राएं की हैं और धार्मिक स्थलों की यात्राएं की हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं सनातन धर्म के चारों धाम और 12 ज्योतिर्लिंग की यात्राएं कर चुका हूं
1: जी।
2: और वहां पर जाकर के मैंने केवल आस्था की पूजा नहीं की है, वहां के जन समुदाय को, वहां की संस्कृति को समझने का प्रयास किया है। और मुझे तो बड़ी हैरानी होती है कि वो लोग कितने महान थे जिन्होंने पूरे देश में धार्मिक स्थानों को जगह जगह पर बनाया, जिससे लोग इसके वशीभूत होकर के पूरे देश की संस्कृति को समझ सकें। नहीं तो ये स्थल एक जगह पर भी बनाए जा सकते थे। 12 ज्योतिर्लिंग जगह जगह फैले हुए हैं, चारों धाम जगह जगह फैले हुए हैं और इसके अलावा जो प्राकृतिक स्थल हैं उनका तो अपना आनंद होता है, प्रकृति जितना तो हमें कुछ दे ही नहीं सकता है
1: जी।
2: जी,
1: तो दर्शन दृष्टि और पांव में आपने इन्हीं ज्योतिर्लिंगों का पूरा लेखा-जोखा लिखा है।
2: हाँ, इसमें केवल ज्योतिर्लिंग नहीं है, आप जैसे शीर्षक से देखेंगे दर्शन दृष्टि और पांव, दर्शन इसमें मेरा श्लेष है, दर्शन उस ज्योतिर्लिंग या चारों धाम के जो विग्रह है मूर्ति उसके दर्शन से भी है, और जो जीवन दर्शन है वह दर्शन विश्व में आता है। और उस स्थान को देखने की दृष्टि क्या है, उसको देखने की, उसको समझने की दृष्टि

0: क्या है, क्या आप गए यात्रा किए, धार्मिक स्थल पर गए हैं तो वहां आपने दर्शन पूजन किया और आ गए, प्राकृतिक स्थल पर गए हैं तो आपने एंजॉय किया और आ गए, चलते गए चलते आ गए, क्या यही है? नहीं, मेरा मानना है कि जहां आपने दर्शन किया वहां का जीवन दर्शन क्या है, इस चीज को देखिए। आपने किसी पर्वतीय या किसी मनोरम स्थल का भ्रमण किया है तो उस पर आपकी दृष्टि क्या है, और पांव यात्राओं से जुड़े होते हैं, बेसिक चीजें हैं। आप जब यात्रा करते हुए अपनी मूल चीजों से जुड़े रहते हैं उसको संकेतित करता है पांव। इन सब चीजों को मिलाकर के मैंने धार्मिक स्थलों से लेकर के प्राकृतिक स्थलों की यात्राओं का वर्णन इसमें किया हुआ है।
1: काफी जगह आप गए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और मदुराई सिक्किम वगैरह, इन सभी जगहों पर आप गए, अजंता एलोरा पंचमढ़ी, इन सभी का आपने इसमें वर्णन किया है। बस एक काम आपने नहीं किया होगा जो आम जनता करती है कि कहीं भी हम जाते हैं और अपनी सेल्फी खींच लाते हैं।
0: जी जी जी जी
1: आज हमारा जितना भी उद्देश्य है वो यही है कि हम किसी भी धार्मिक या बड़े जगह जाकर सेल्फी जरूर खींच के आते हैं, इतना हमने कमाया है मुझे लगता है।
0: बड़ा आपने महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया। मैं देखता हूँ कई बार धार्मिक स्थलों पर जाता हूँ, ज्योतिर्लिंगों में जाता हूँ, जहाँ पर मोबाइल फोन अलाउड है, कैमरा अलाउड है, वहां पर लोग लेके जाते हैं 1 मिनट 2 मिनट के, उनको दर्शन मिलता है, लेकिन वो खुद दर्शन करने के बजाय मोबाइल को दर्शन कराते रहते हैं। मैं कहता हूं भाई आपको ये चीज तो घर पे टीवी पे मिल जाएगी, आप दर्शन करने गए हैं, आस्था माने तो दर्शन करिए। दूसरी बात, अगर मैं पर्यटक स्थलों की बात करूं तो मैं कहीं प्रकृति में जाता हूं तो प्रकृति में मैं खो जाता हूं। प्रकृति मुझे बहुत प्रिय है, मुझे इस बात की आपको शायद मंदाकिनी जी विश्वास ना हो, मुझे भूल जाता है कि यहां फोटो भी खींचनी चाहिए।
1: जी
0: आते आते टाइम एक दो फोटो खींच लेता हूं मैं, क्योंकि कहीं अपने यात्रा संस्मरण डालना होता है, दिखाना होता है, तो मैं प्रकृति को अपनी आंखों से देखना ज्यादा पसंद करता हूं बजाय मोबाइल कैमरे के।
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने। और बस चलते चलाते एक गीत का और सुनना चाहेंगे हम।
0: जी जरूर।

ये था जाने माने लेखक हरिशंकर राढ़ी से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का पहला भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंधल, संपादन सहयोग झरना सोलंकी का, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। अब आज का आज के मेहमान कार्यक्रम समाप्त होता है।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती के प्रोग्राम FM 110.7 मेगाहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के चुरू केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 11 बजे हैं। कार्यक्रम विवरण में लीजिए जानिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित किए जाने वाले शेष कार्यक्रमों की जानकारी और उनके प्रसारण समय के बारे में।

अब से कुछ ही पलों बाद दिन में 11:05 पर आप सुनेंगे चित्रपट संगीत। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम लेकर आएंगे दिन में 12 बजे। 12:30 पर आप सुनेंगे लोक संगीत का कार्यक्रम माटी के स्वर। आज की कलाकार होंगी अफरोज बानो। आकाशवाणी जयपुर से हिंदी में प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे दिन में 1 बजे। 1:05 पर महिलाएं सुनेंगी अपना

कार्यक्रम महिला जगत आकाशवाणी दिल्ली से मिड डे न्यूज का प्रसारण किया जाएगा दिन में 2 बजे और दोपहर समाचार होंगे 2:15 पर। दोपहर 2:30 पर आप सुन सकते हैं फिल्म संगीत का प्रोग्राम तराने नए पुराने।

हमारी दूसरी सभा आरंभ होगी शाम 4 बजे आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स के साथ। युवा साथी सुनेंगे अपना प्रोग्राम युववाणी शाम 5 बजे, शाम 6 बजे हिंदी में, 6:05 पर अंग्रेजी में और 6:20 पर संस्कृत में समाचार रिले किए जाएंगे आकाशवाणी दिल्ली से। प्रादेशिक समाचारों में शाम 6:30 पर हिंदी में और 6:45 पर राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे आकाशवाणी जयपुर से। आकाशवाणी जयपुर से जिले की चिट्ठी होगी शाम 6:40 पर।

शाम 7 बजे ग्रामीण श्रोता सुनेंगे अपना कार्यक्रम किसान वाणी आकाशवाणी चूरू से। 7:30 पर आपको सुनवाया जाएगा राजस्थानी लोक संगीत। रात 8 बजे आप सुनेंगे फिल्म संगीत का प्रोग्राम गुलदस्ता। आकाशवाणी दिल्ली से समाचार संध्या का अंक रिले किया जाएगा रात 8:45 पर और रात 9 बजे News@9। रात 9:30 पर आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से कंट्री वाइड प्रादेशिक लोक और सुगम संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम रिले किया जाएगा आकाशवाणी दिल्ली से रात 10 बजे और सभा के अंत में रात 11 बजे हिंदी में और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार होंगे आकाशवाणी दिल्ली से। कार्यक्रम विवरण में अभी आपने जाना हमारे केंद्र से आज प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारी और उनके प्रसारण समय के बारे में। FM 110.7 MHz पर ये आकाशवाणी का चुरू केंद्र है। दिन के 11:05 होने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम चित्रपट संगीत।

सोनू निगम और श्रेया घोषाल की युगल आवाजों में अभी आपने सुना पहली फिल्म का गीत। शब्द थे गुलजार के और संगीत एमएम करीम का।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं मुस्तफा जाहिद की आवाज में आवारापन फिल्म का गीत। शब्द रचना सईद कादरी की और धुन है प्रीतम की।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी चुरू से चित्रपट संगीत। इस वक्त आपके रेडियो सेट पर है लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में रॉकी फिल्म का गीत।

सपने साजन के। इस फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं मुकुल अग्रवाल और अलका याग्निक की युगल आवाजों में। आकाशवाणी चूरू से प्रसारित हो रहा है कार्यक्रम चित्रपट संगीत FM 100.7 MHz पर।

बेवफा से वफा, इस फिल्म का गीत आप सुन रहे हैं आशा भोसले की आवाज में। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी चुरू से चित्रपट संगीत।

अभी आप सुन रहे थे दोस्त फिल्म का गीत, मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर और संवाद अदायगी में आवाज़ थी शत्रुघ्न सिन्हा की। आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत आकाशवाणी चूरू से।

0: चित्रपट संगीत का अंतिम गीत आप सुन रहे थे अनुराधा पौडवाल की आवाज में। फिल्म थी हम आपके दिल में रहते हैं। ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। FM 100.7 MHz पर ये आकाशवाणी का चुरू केंद्र है। दोपहर के 12 बज चुके हैं। लीजिए सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।
1: मान पर टिकी होती है।
2: बहुत सुंदर विचार आपने भेजा है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू और सुजाता साहू जी का।
1: गांव ढाणी कुतुबपुर जिला हांसी हरियाणा से रामधारी अवनी प्रियांशी रियांशी ओजस अनाया गुरदीप और बेबी किरत अवाना ने लिखा है।
2: कार्यक्रम उमंग के प्रस्तुतकर्ता विमलेश जी और अजीत जी को सप्रेम नमस्कार। कार्यक्रम उमंग के तहत 3 जून 2026 को प्रस्तुत गोबी शीत मरुस्थल की भौगोलिक सांस्कृतिक एवं सामाजिक जानकारी हमारे लिए अत्यंत ज्ञानवर्धक रही। साथ ही प्रेरणादायी कहानी दोस्त की पहचान ने सच्ची मित्रता के गुणों को समझने की महत्वपूर्ण सीख हमें दी। ऐसे रोचक शिक्षाप्रद एवं प्रेरणादायक कार्यक्रमों की भविष्य में भी आपसे अपेक्षा है। आपके उत्कृष्ट प्रयास के लिए हृदय से धन्यवाद।
1: बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय जी लिखते हैं।
2: आदरणीय अजीत जी व विमलेश जी को सादर नमस्कार। समावेशी शिक्षा पर प्रोफेसर भारती जी द्वारा दी गई ज्ञानवर्धक जानकारी महत्वपूर्ण थी।

0: साथ ही गुजरे सप्ताह शीत मरुस्थल पर बेहद शानदार जानकारी दी गई। ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारी को हमारे बच्चों ने छुट्टियों में बड़े ध्यान और लगन से सुना और वे इस पर अमल भी कर रहे हैं, इसलिए हम उमंग कार्यक्रम की पूरी टीम का हृदय से शुक्रिया अदा करते हैं।
1: हम भी आपका हृदय से शुक्रिया अदा करते हैं संदेश भेजने के लिए।
0: अगला संदेश हमें मिला है नर्मदा नगर मध्य प्रदेश से सूरज वर्मा, ऋषभ, कनक और भावना वर्मा जी का।
1: ग्राम बंगला माटिया बालोद से शिव कुमार अंगारे।
0: आप सभी श्रोताओं को हमारी ओर से आभार खूबसूरत संदेशों को भेजने के लिए। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। श्रोताओं, कल हमने चर्चा की थी बहुमूल्य खनिज सोने के बारे में
1: और अब चलते हैं आगे और चर्चा करते हैं एक और खनिज के बारे में। तो अजीत जी, जरा उस खनिज का नाम तो बताइए।
0: जी विमलेश जी, वो तो बताऊंगा लेकिन इस बार कुछ हिंट के साथ।
1: तो दीजिए हिंट।
0: हिंट है, ये खनिज सोने से भी अधिक मूल्यवान माना जाता है। इसकी चमक अत्यंत आकर्षक है
1: जी।
0: इसे तराशा जाता है।
1: और
0: हाँ, ये कांच काटने के काम भी आता है।
1: जी अजीत जी, मैं समझ गई, ये कहीं हीरा तो नहीं?
0: बिल्कुल सही जवाब। जी हाँ श्रोताओ, ये हीरा है। ये खनिज पृथ्वी पर पाए जाने वाले किसी भी प्राकृतिक पदार्थ से अधिक कठोर है। हीरे के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन प्रश्न ये है कि कितने लोग ये जानते हैं कि ये बनता कैसे है। तो आइए देते हैं इस रोचक चर्चा को विस्तार।
1: श्रोताओ, हीरे का निर्माण होता है पृथ्वी की गहराइयों में। अगर आप पूछें कि कितनी गहराइयों में, तो हम आपको बता दें कि पृथ्वी की सतह से लगभग 150 किलोमीटर नीचे पृथ्वी की परत मेंटल में बनता है।
0: आपको हम ये भी बता दें कि कोयला और हीरा दोनों ही मुख्य रूप से कार्बन से बने होते हैं
1: जी,
0: लेकिन हीरा बनने की प्रक्रिया बिल्कुल अलग है।
1: श्रोताओ, जैसा कि अभी हमने सुना था कि पृथ्वी की सतह से लगभग 150 किलोमीटर से भी अधिक गहराई में बनता है, आइए जानते हैं क्या होता है उन गहराइयों में।
0: श्रोताओ, पृथ्वी की गहराइयों में लगभग तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक होता है और वहाँ का दबाव वायुमंडलीय दबाव से हजारों गुना अधिक होता है।
1: इन अत्यधिक दबाव वाली परिस्थितियों में कार्बन के परमाणु एक विशेष क्रिस्टलीय संरचना में व्यवस्थित हो जाते हैं, जिसके कारण हीरा बनता है। इस प्रक्रिया में लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं। लेकिन अजीत जी, श्रोताओं की ओर से एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। अभी हमने जाना कि हीरे पृथ्वी की सतह से 150 से भी अधिक गहराई में बनते हैं। इतनी गहराई तक उत्खनन तो असंभव है, तो फिर हीरे तक हम कैसे पहुँचे?
0: सचमुच ये बहुत ही सुंदर प्रश्न है विमलेश जी। यदि हीरे इतनी गहराई में ही बने रहते तो हम उन्हें कभी देख ही नहीं पाते। होता ये है कि ज्वालामुखीय विस्फोटों के कारण मैग्मा यानी धरती के अंदर की पिघली चट्टानें तीव्र गति से ऊपर उठती हैं और वे साथ साथ हीरों को भी पृथ्वी की सतह के बहुत करीब ले आती हैं
1: और फिर हम उन्हें उत्खनन द्वारा निकाल लेते हैं। श्रोताओ, वैज्ञानिक दृष्टि से हीरा शुद्ध कार्बन है। आपको बता दें कि हीरा और आपके घर में पाई जाने वाली पेंसिल की नोक ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन से बने हैं। अंतर केवल परमाणुओं की व्यवस्था का है।
0: पता है श्रोताओ, हीरे को यदि अत्यधिक ताप पर ऑक्सीजन में जलाया जाए तो अंत में कार्बन डाइऑक्साइड गैस में वो बदल सकता है। श्रोताओ, एक बात और आपको बता दें, आजकल आभूषणों और उद्योग में इस्तेमाल होने वाले हीरे प्रयोगशालाओं में ही बनाए जाते हैं।
1: लेकिन एक खास बात यह है कि कृत्रिम रूप में हीरों को बनाने के लिए छोटा प्राकृतिक हीरा इस्तेमाल किया जाता है, जिसे डायमंड सीड कहा जाता है। इस सीड के द्वारा प्राकृतिक प्रक्रिया की नकल करके हीरा बनाया जाता है। एक बात जरूर है कि प्राकृतिक रूप से हीरा बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं, लेकिन कृत्रिम रूप में इसे बनाने में बहुत कम समय लगता है।
0: लेकिन इसे बनाने की विधा या फॉर्मूला हमें प्रकृति से ही मिलता है, तो हम याद रख सकते हैं कि पृथ्वी की गहराइयों में अत्यधिक ताप और दबाव के कारण जो कार्बन के क्रिस्टल बनते हैं उन्हें हम हीरा कहते हैं।
1: तो श्रोताओ, आप कह सकते हैं कि आपके हाथ में चमकता हुआ हीरा वास्तव में पृथ्वी की गहराइयों में लाखों करोड़ों वर्ष पहले बना हुआ एक अद्भुत प्राकृतिक चमत्कार है।
0: जी, तो श्रोताओ ये थी जानकारी हीरे की। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज की ही जानकारी से प्रश्न है, डायमंड सीड किसे कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: डायमंड सीड किसे कहते हैं?
0: आप हमारे प्रश्नों के उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर भेज सकते हैं और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो सुनते हैं आज का पहला शैक्षिक कार्यक्रम। शीर्षक है न्याय।
1: ये कार्यक्रम कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसके द्वारा पशु पक्षियों के प्रति दया और प्रेम भाव रखने का संदेश दिया गया है।
2: चलो मित्र सिद्धार्थ, उद्यान की ओर चलते हैं, सरोवर के पास। कैसी

0: शांति है। पक्षी नीड़ों की ओर लौट रहे हैं। वहां देखो उस पेड़ पर कैसे वो चिड़िया अपने बच्चे को दाना खिला रही है।
1: अति सुंदर। और तनिक उधर देखो उद्यान के बाहर कैसे एक बछड़ा अपनी माँ की ओर दौड़ा चला जा रहा है और गाय अपने बछड़े को लाड़ कर रही है।
2: साथियों, ये वार्तालाप हो रहा था युवराज सिद्धार्थ और उनके मित्र वसु के बीच। सिद्धार्थ का जन्म लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था, जो कपिलवस्तु नगर का एक ग्राम उद्यान था। उनके पिता राजा शुद्धोधन थे, जो शाक्य गणराज के राजा थे, जिसकी राजधानी थी कपिलवस्तु। युवराज सिद्धार्थ ही आगे चलकर गौतम बुद्ध बने और विश्व को अहिंसा और शांति का पाठ पढ़ाया। प्रारंभ में उनका जीवन राजसी सुख सुविधाओं से भरपूर था। आइए एक बार फिर से चलते हैं उस उद्यान की ओर, जहां दोनों मित्र वार्तालाप कर रहे हैं।
1: युवराज, तनिक ऊपर देखो, कितने सुंदर पक्षी हैं।
0: ये राजहंस हैं। ऐसा लगता है मानो हवा में तैर रहे हैं, और इतनी ही सुंदरता से वे पानी में भी तैर सकते हैं।
1: ओह, देखो एक राजहंस नीचे की ओर गिर रहा है। हाँ, लगता है उसे तीर लगा है।
0: प्यारे पक्षी, सब ठीक हो जाएगा, घबराओ नहीं। मैं हूं ना, न जाने किस निर्दयी ने इसे घायल कर दिया। भला इसका क्या दोष है?
3: दोष ये है कि ये सुंदर है, प्यारा है, सबको पसंद आता है।
0: क्या सुंदर होना और सबका प्यारा होना कोई दोष है? प्यारे हंस, मैं तुम्हारा ये तीर निकाल देता हूं, फिक्र मत करो। ये निकाल दिया, अब तुम मेरी गोद में थोड़ी देर विश्राम कर लो। मित्र, कोई भी व्यक्ति जिसके पास हृदय है, इन निर्दोष पक्षियों को मार ही नहीं सकता। तुम जरा दौड़कर राज वैद्य से इसके लिए कोई औषधि तो ले आओ।
1: हाँ मित्र, अभी जाता हूँ।
2: युवराज सिद्धार्थ ने हंस को विश्राम करने के लिए पास के ही एक कुंज में लिटा दिया और वसु के आने की प्रतीक्षा करने लगे। इतने में उनके चचेरे भाई देवदत्त आ पहुंचे। वे इधर उधर देख रहे थे, मानो कुछ खोज रहे हों।
4: कुमार सिद्धार्थ, कुमार सिद्धार्थ, कुमार सिद्धार्थ, अभी मैंने एक उड़ते हुए हंस को तीर मारकर नीचे गिराया था। मैंने अपनी आंखों से उसे गिरते हुए देखा था, वो इधर ही कहीं आया है। तीर धनुष पर मेरा लक्ष्य अब भली भांति सद गया है। ये बात मैं कल गुरुजी को बताऊंगा तो वो कितने प्रसन्न होंगे। तुम गुरुजी के सामने मेरी गवाही दोगे ना?
0: अवश्य दूंगा देवदत्त, और वो भी प्रमाण के साथ, क्योंकि इसका प्रमाण वो हंस है जिसे तुमने मारा है।
4: तो हंस तुम्हारे पास है, लाओ उसे मुझे दे दो।
0: क्यों दे दो?
4: क्यों दे दो, ये तो बड़ा ही विचित्र प्रश्न है भाई। इसलिए दे दो क्योंकि मैंने उसे मारा है।
0: लेकिन मैंने इसे बचाया है।
4: तुम राजकुमार हो इसलिए मुझे धमकी देना चाहते हो? मैं भी देखता हूँ कैसे नहीं दोगे। इसका निर्णय तो अब राज दरबार में ही होगा।
2: तो साथियों, दूसरे दिन दरबार लगा हुआ था।
5: महाराज की जय हो,
6: महाराज की जय हो, महाराज की जय हो।
2: प्रतिहारी ने सभी प्रकरणों की जानकारी दी और बताया कि आज कुमार देवदत्त भी एक प्रकरण न्याय के लिए प्रस्तुत करना चाहते हैं। राजकुमार सिद्धार्थ भी उपस्थित थे।

0: कुमार देवदत्त को प्रस्तुत किया जाए।
1: महाराज को प्रणाम करता हूँ। महाराज, मेरा कहना है कि राजकुमार सिद्धार्थ ने मेरा हंस ले लिया है, जिसे मैंने मारा था। वो मुझे मेरा हंस नहीं दे रहे, मुझे न्याय चाहिए।
0: राजकुमार सिद्धार्थ, क्या ये वही हंस है जो आपकी गोद में है?
2: महाराज को प्रणाम करता हूँ। जी महाराज, ये वही हंस है। मेरा कहना है कि कुमार देवदत्त ने इस हंस को मारा है, लेकिन मैंने इसे बचाया है। अतएव मैं ये हंस इन्हें नहीं दे सकता।
0: लेकिन सिद्धार्थ, देवदत्त ने इस हंस का आखेट किया है। नियम के अनुसार आखेट वीर का अधिकार है। वीर आखेट को छोड़ नहीं सकता।
2: जी महाराज, लेकिन नियम तो ये भी कहता है कि वीर शरणागत को भी नहीं छोड़ सकता। हमारी शाक्य राजवंश की परंपरा और शास्त्रों का नियम तो ये भी कहता है कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है।
1: पर महाराज, मैंने पहले इस हंस को मारा है, इसलिए ये मेरा है।
2: जी, पहले मारा था, तभी तो वो मेरी शरण में आया है। बिना मारे वो मेरी शरण में कैसे आता?
0: महामंत्री, समस्या जटिल हो गई है। क्या आप कोई मार्ग सुझा सकते हैं?
3: जी महाराज, आपकी आज्ञा हो तो मैं अभी तुरंत दूध का दूध और पानी का पानी कर सकता हूँ। अब तो निर्णय ये हंस ही करेगा।
0: निर्णय ये हंस ही करेगा? भला वो कैसे आज्ञा है?
3: महाराज, मेरा आग्रह है कि हंस को यहाँ इस आसन पर बैठाया जाए।
4: हंस को आसन पर बैठा दिया गया। हंस भयभीत था, लेकिन सिद्धार्थ उसे सांत्वना दे रहे थे। सभा स्तंभित थी, सभी फुसफुसा रहे थे।
5: पता नहीं ये हंस कैसे बताएगा?
6: गाड़ी में बैठ कर सिद्धार्थ को मिलना किसके पास जा
5: रहा है?
3: कुमार देवदत्त, आप कहते हैं कि इस पर आपका अधिकार है। आसन के पास आइए और हंस को अपने पास बुलाइए।
1: ओ प्रिय हंस, मेरे पास आओ, आ जाओ, आओ मेरे पास, आ जाओ।
4: देवदत्त जितनी बार हंस को बुलाते, वो उतनी ही बार भय के मारे आसन से चिपक जाता। देवदत्त ने बहुत प्रयास किया, लेकिन बात नहीं बनी।
3: अब मैं राजकुमार सिद्धार्थ को सामने बुलाना चाहूंगा और कहूंगा कि वे भी हंस को अपने पास बुलाएं।
2: प्यारे राजहंस, मेरे प्रिय मित्र, डरो मत, तुम्हें कोई हानि नहीं होगी, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। मेरे पास आ जाओ, अपने मित्र के पास आ जाओ, आ जाओ, घबराओ मत।
4: फिर क्या था, पलक भी नहीं झपकी थी, हंस ने अपने पंख फैलाए और उड़ता हुआ सिद्धार्थ की गोद में ऐसे आ चिपका जैसे एक बालक अपनी माँ की गोद में चिपक जाता है।
0: स्वयं इस पक्षी ने अपना निर्णय बता दिया है। हमने सुना था कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। आज साक्षात देख भी लिया। मैं हर्ष के साथ घोषित करता हूँ कि ये हंस युवराज सिद्धार्थ का ही है।
7: महाराज की जय हो।
8: महाराज की जय हो।
9: महाराज की जय हो।
10: अभी आप सुन रहे थे कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक वीणा के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम न्याय। साथियों, इस कार्यक्रम में आपने दो शब्द सुने। पहला शब्द था नीड और दूसरा शब्द था आखेट। तो इसका अर्थ आपको बता देते हैं।

0: नीड़ शब्द का अर्थ है घोंसला और आखेट शब्द का अर्थ होता है शिकार। अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को, पशु पक्षियों का ख्याल रखने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, सोचिए और इसकी सूची बनाइए। अभी आपने सुना कार्यक्रम न्याय।
1: मैं एक नन्ही बच्ची हूँ, प्री स्कूल में जाती हूँ। अलर्ट हूँ मैं, चल चलूँ।

0: तो सुनिए अपने छोटे बच्चों के मन की बात। निष्ठा, गुणवत्ता पूर्ण प्रारंभिक बाल शिक्षा, जिससे मिलेगा बचपन को महत्वपूर्ण आयाम। बाल्यावस्था में 6 वर्ष तक के छोटे बच्चों का शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्तर पर तीव्र सकारात्मक विकास होता है। जी हाँ, अब महकेंगे आंगनबाड़ी और प्री स्कूल, क्योंकि गुणवत्तापूर्ण बाल शिक्षा से, निष्ठा से खिलेंगे ये नन्हे फूल।
1: और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम, शीर्षक है हमारा आदित्य।
2: ये कार्यक्रम कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसमें भारत के सौर मिशन की विस्तार से जानकारी दी गई है।
3: 5, 4, 3, 2, 1, 0।
4: दिन था 2 सितंबर 2023, स्थान इसरो का सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, समय भारतीय समयानुसार ठीक 11:50, जब अंतरिक्ष यान आदित्य L1 की गगनभेदी गर्जना से आकाश गूंज उठा। लाखों करोड़ों लोगों ने सारी दुनिया में इस दृश्य को टेलीविजन पर देखा।
5: श्रीहरिकोटा से आदित्य L1 इसरो के पहले सूर्य मिशन को लॉन्च कर दिया गया।
4: रेडियो पर समाचार प्रसारित हुए और दूसरे दिन के सभी अखबारों ने इसे अपने मुख पृष्ठ पर प्रमुखता से छापा। शीर्षक था आदित्य L1 का सफल प्रक्षेपण। अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत विश्व की चौथी महाशक्ति बना।

0: आज कक्षा में बड़े उत्साह का वातावरण है, क्योंकि विद्यालय के विशेष निमंत्रण पर आज जाने माने स्पेस जर्नलिस्ट श्री विनीत चरण जी आने वाले हैं, जो सौर्य यान आदित्य के बारे में बातचीत करेंगे।
1: क्या तुम्हें पता है कि श्री विनीत चरण जी आने वाले हैं?
2: क्या वो चंद्रयान के बारे में बात करेंगे?
1: मुझे लगता है वो आदित्य यान के बारे में बात करेंगे।
2: चलो देखते हैं वो किस यान के बारे में बात करेंगे।
3: हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब?
4: हम सब अच्छे हैं।
3: तो बच्चों, शुरू करते हैं बातचीत। आप तैयार हैं?
4: जी हम तैयार हैं।
3: तो आज हम बातचीत करने जा रहे हैं भारत के सौर्य यान आदित्य L1 के बारे में।
4: आदित्य L1 के बारे में?
5: बच्चों शांत हो जाओ, आप बारी बारी सर से सवाल पूछ सकते हैं।
2: सर, इसका नाम आदित्य क्यों पड़ा?
3: बहुत अच्छा सवाल। देखो, आदित्य एक संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ है सूरज यानी सूर्य। अच्छा चलो बताओ, सूर्य के लिए और कौन कौन से शब्द हैं?
1: सर, टीचर ने बताया था कि सूर्य को रवि और भास्कर भी कहते हैं।
3: बहुत अच्छे। चलो अब मेरी ओर से एक खास सवाल। अच्छा तो अब ये बताओ कि क्या तुमने किसी वैज्ञानिक का नाम सुना है जिनके नाम में भास्कर शब्द जुड़ा है?
2: जी सर, उनका नाम है भास्कर आचार्य।
3: अरे वाह, तुम्हारा क्या नाम है बेटी?
2: जी, मेरा नाम श्रुति है।
3: शाबाश श्रुति। तुम्हें बता दूं कि भास्कर आचार्य प्राचीन भारत के महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। हाँ तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे सूर्य की। क्या आप जानते हैं कि सूर्य क्या है? मेरा मतलब है कि सूर्य ग्रह है या तारा है?
6: सूर्य ग्रह है या तारा?
3: अरे सोचो सोचो, जो जवाब देगा या प्रश्न पूछेगा वो सबसे पहले अपना नाम बताएगा।
2: सर, मेरा नाम सुमित है। सूर्य एक ग्रह है।
3: सुमित, तुमसे जरा सी भूल हो गई। सूर्य असल में एक तारा है।
4: अच्छा सर।
1: सर, मेरा नाम सोहम है। मेरा प्रश्न यह है कि सूर्य इतनी गर्मी कैसे देता है? क्या वहाँ आग जलती है?
2: और अगर जलती है तो वहाँ आग किसने लगाई होगी?
3: बच्चों, दरअसल सूर्य में गर्मी आग जलने से नहीं होती। सूर्य ऐसी गैसों से बना है जो बहुत गर्म होती हैं, जैसे हीलियम और हाइड्रोजन।
1: हीलियम और हाइड्रोजन सर?
3: हाँ, सूर्य मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम नाम की गैसों का एक विशाल गोला है।
2: विशाल गैसों का गोला?
1: अब समझ आया कि सूर्य इतना गर्म कैसे होता है।
3: शाबाश, समझ गए ना?
4: जी सर।
2: सर, जिस तरह से चंद्रमा पर जाया जा सकता है, क्या उसी प्रकार सूर्य पर भी जाया जा सकता है?
3: बहुत अच्छा प्रश्न किया है। देखो, सूर्य का तापमान इतना अधिक है कि वहाँ चंद्रमा की तरह नहीं जाया जा सकता। हाँ, एक निश्चित दूरी से सूर्य का अध्ययन किया जा सकता है। इसलिए तो हमारे देश ने सूर्य के बारे में अध्ययन करने के लिए आदित्य L1 को अंतरिक्ष में भेजा।
1: सर, आदित्य अंतरिक्ष यान के बारे में हमें विस्तार से बताइए ना।
3: जरूर बच्चों। देखो, आदित्य L1 चंद्रयान की तरह ही एक यान है जिसका कार्य है सूर्य के बारे में जानकारी जुटाना।
4: जी सर।
3: जैसे ये किस समय कैसा होता है, इसका तापमान स्थिर रहता है या घटता बढ़ता है, और इसका क्या प्रभाव हमारी पृथ्वी या सौर मंडल के अन्य ग्रहों पर पड़ता है।
2: सर, हमने आपके लेख में ही पढ़ा है कि आदित्य यान ने सूर्य के कई फोटोज पृथ्वी पर भेजे हैं।
3: हाँ सही कहा, आदित्य यान का मुख्य उद्देश्य सूर्य की बाहरी परतों का अध्ययन करना है। इन तस्वीरों से हमें तूफानों और अंतरिक्ष के मौसम की बेहतर जानकारी मिलेगी, जिससे भविष्य में संचार और उपग्रह सेवाओं को सुरक्षित रखने में हमें बड़ी मदद मिलेगी।
1: सर, मेरा नाम दिवाकर है।

0: भाई वाह, दिवाकर का मतलब भी तो सूर्य ही होता है ना?
1: जी सर।
0: जी दिवाकर, आपका प्रश्न क्या है?
2: सर, मेरा प्रश्न है, यदि सूर्य इतना गर्म है तो आदित्य यान उसके पास जाकर तस्वीरें कैसे भेज रहा है? क्या वो जल नहीं जाएगा?
3: अरे भला जलेगा कैसे, आदित्य यान सूर्य से एक सुरक्षित दूरी पर है, करोड़ों किलोमीटर दूर, समझे?
4: जी सर। सर, आदित्य यान का पूरा नाम आदित्य L1 क्यों है? L1 का क्या मतलब है?
0: देखो बेटी, L1 का मतलब है लैग्रेंज पॉइंट। ये बिंदु अंतरिक्ष का एक विशिष्ट स्थान होता है जो सूर्य और पृथ्वी के केंद्रों को जोड़ने वाली रेखा पर होता है। इस स्थान से सूर्य को लगातार बिना किसी रुकावट के देखा जा सकता है, और ये देखा गया है कि अंतरिक्ष यान लगभग स्थिर रहता है। लैग्रेंज बिंदु 1 से 5 तक होते हैं।
2: सर, एक बार जब सूर्य ग्रहण लगा था तो हमें विशेष प्रकार की किट दी गई थी और कहा गया था कि इसी किट के द्वारा सूर्य को देखें। ऐसा क्यों?
0: बेटा सोहम, सिर्फ सूर्य ग्रहण के समय ही नहीं, सूर्य को कभी भी प्रत्यक्ष आंखों से देखना हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। लेकिन आदित्य यान ने जो तस्वीरें हमें भेजी हैं, उन्हें देखकर हमें पता चलता है कि सचमुच कितना अद्भुत है हमारा सूर्य।
4: सर, आपकी बातें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं भी बड़े होकर अंतरिक्ष वैज्ञानिक बनूंगी, चंद्रमा और दूर दूर के तारों के बारे में पढ़ूंगी और अंतरिक्ष यान भी भेजूंगी।
0: शाबाश बच्चों, शाबाश। खूब पढ़ो, खूब पढ़ो, और देश का नाम हमेशा रोशन करो।
5: तो साथियों, अभी आपने सुनी जानकारी L1 यानी आदित्य यान के बारे में। कैसी लगी जरूर बताइएगा, और ये भी पता लगाइए कि और कौन कौन से यान अंतरिक्ष में भारत द्वारा भेजे गए हैं।
6: हमारा आदित्य, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के बाद हमारा आज का उमंग कार्यक्रम समाप्त होता है, तो अब अपने मित्र अजीत
7: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
6: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
8: अभी आप सुन रहे थे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। ये कार्यक्रम आकाशवाणी चुरू से प्रसारित किया गया। FM 100.7 MHz पर हम आकाशवाणी के चुरू केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 12:30 होने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे लोक संगीत का कार्यक्रम माटी के स्वर। आज के कलाकार हैं अफरोज बानो।

अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत का कार्यक्रम माटी के स्वर। आज की कलाकार थी अफरोज बानो। ये कार्यक्रम अब भी यहीं संपन्न होता है। FM 100.7 MHz पर हम आकाशवाणी के चुरू केंद्र से बोल रहे हैं। दिन का 1 बजने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी जयपुर से हिंदी में प्रादेशिक समाचार।

आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। केंद्रीय ग्रामीण विकास और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज आंध्र प्रदेश के मुक्कावरीपल्ली गांव से विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी का राष्ट्रव्यापी शुभारंभ किया। इस योजना के तहत पात्र ग्रामीण परिवारों को 125 दिनों के रोजगार की वैधानिक गारंटी प्रदान की जाएगी। इधर राजस्थान में अभियान की राज्य स्तरीय शुरुआत ब्यावर जिले के देवमाली गांव से हो रही है। पंचायत समिति में हो रहे कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा वीबीजी रामजी का शुभारंभ कर रहे हैं। मुख्यमंत्री यहां से जल जीवन मिशन के तहत लगभग 418 करोड़ रुपए की विभिन्न पेयजल परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। साथ ही 78 नई पेयजल टंकियों के निर्माण कार्यों का शिलान्यास भी करेंगे। केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ योजना 2026 को अधिसूचित कर दिया है। ये योजना 29 जून से प्रभावी हो गई है। नई योजना 1952 की कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम का स्थान लेगी। इस योजना का उद्देश्य डिजिटल अनुपालन को मजबूत करना, प्रशासनिक दक्षता में सुधार करना, खातों के स्थानांतरण को और आसान बनाना और भविष्य निधि ढांचे को नए श्रम कानून के अनुरूप बनाना है। नई योजना में अनिवार्य ईपीएफ अंशदान कर्मचारी और नियोक्ता दोनों के वेतन का 12% बना रहेगा। केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित प्रतिष्ठानों पर मौजूदा 10% की दर लागू रहेगी। अलवर में अब कचरे से बिजली बनाई जाएगी। राजधानी जयपुर के बाद अलवर प्रदेश का ऐसा

0: दूसरा शहर होगा जहां वेस्ट टू एनर्जी परियोजना के तहत कचरे से बिजली का उत्पादन होगा। अलवर नगर निगम ने इसके लिए वेस्ट टू एनर्जी संयंत्र की स्थापना का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा है। संयंत्र में रोजाना लगभग 1,000 टन ठोस कचरे का उपयोग किया जाएगा। इससे शहर में एकत्रित कचरे के निस्तारण में भी सहायता मिलेगी। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी जोधपुर के वैज्ञानिक अब ब्रह्मांड से जुड़े शोध में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योगदान देंगे। संस्थान के दो वैज्ञानिकों को यूरोप की वैज्ञानिक संस्था सीईआरएन सर्न की एटलस परियोजना से जोड़ा गया है। ये परियोजना दुनिया की सबसे बड़ी वैज्ञानिक अनुसंधान पहलों में से एक है। इसके लिए मशीन लर्निंग जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाएगा। इस शोध के माध्यम से वैज्ञानिक ब्रह्मांड की संरचना, सूक्ष्म कणों के गुणों और नए वैज्ञानिक सिद्धांतों की संभावनाओं का अध्ययन करेंगे। भरतपुर जिले के रायपुर गांव के पास आज एक सड़क दुर्घटना में दो महिलाओं की मृत्यु हो गई जबकि 13 अन्य घायल हो गईं। ये दुर्घटना उस समय हुई जब ये महिलाएं काम के लिए जा रही थीं और उनकी ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। घायल महिलाओं को भरतपुर के आरबीएम जिला अस्पताल पहुंचाया गया है जहां कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून ने प्रदेश में दस्तक दे दी है। मॉनसून इस बार सामान्य से एक सप्ताह की देरी से प्रवेश किया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिनों में इसके आगे बढ़ने की उम्मीद है। आज उदयपुर, कोटा, अजमेर, भरतपुर और जयपुर संभाग के कुछ हिस्सों में गरज के साथ मध्यम बरसात की संभावना है। कहीं कहीं भारी बारिश भी हो सकती है। वहीं कोटा संभाग के जिलों में कहीं कहीं बहुत भारी बारिश के आसार हैं। विभाग ने अगले पूरे हफ्ते जयपुर, अजमेर, भरतपुर, कोटा और उदयपुर में बारिश की गतिविधियां जारी रहने का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। अमरनाथ यात्रा का पहला जत्था आज जम्मू से रवाना हुआ। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इस जत्थे को रवाना किया। कश्मीर घाटी के बालटल और पहलगाम दोनों आधार शिविरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु इकट्ठे हुए। 57 दिन की ये वार्षिक तीर्थ यात्रा कल से कश्मीर के दोनों मार्गों पर आधिकारिक रूप से शुरू हो रही है। ये यात्रा 28 अगस्त तक चलेगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: FM 110.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के चुरू केंद्र से बोल रहे हैं। दिन का 1:05 हुए हैं। अब महिलाएं सुनेंगी अपना प्रोग्राम महिला जगत।

कार्यक्रम महिला जगत सुनने वाली सभी श्रोता बहनों का स्वागत है उनके अपने पसंदीदा प्रोग्राम महिला जगत में। और आज मैं हूँ आपके साथ माया, तो स्वीकार करो बहनों मेरा प्यार भरा नमस्कार। बहनों आपके साथ बहुत सारी बातें चर्चाएं करेंगे कि हम सुबह शाम जो घूमते हैं वो घूमना क्यों ज़रूरी है, और जो बारिश का मौसम चल रहा है इस मौसम में लगाई जाने क्या क्या सब्जियां हैं जो हम लगा सकते हैं, इनके बारे में भी आपसे बात करेंगे, जिससे कि हमारी जो हॉबी है वो भी पूरी हो जाए और हमारे जो ज़रूरत का सामान है जैसे सब्जियां हैं घर में वो भी हमारा शौक भी पूरा हो जाए और काम भी हो जाए। कहते हैं ना आम के आम और गुठलियों के दाम, और रात को भी जल्दी सोने की आदत है वो भी

0: क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चूरू के साथ। आकाशवाणी चूरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चूरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चूरू, आपकी पहचान हमारी आवाज। ये आकाशवाणी का प्रसारण है, आप सुन रहे हैं 100.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी चूरू।
1: बिल्कुल बेनो, विराम के बाद बात करते हैं अपने स्वास्थ्य की, क्योंकि आजकल हमारे पास इतना टाइम नहीं है, इतनी भागदौड़ रहती है कि हमें खुद के लिए टाइम दे ही नहीं पाते हैं। और जब थोड़ा बहुत टाइम सुबह शाम अगर हम खुद के लिए निकाल लेते हैं तो हमें बहुत ही अच्छा फील होता है और हमारा जो शरीर है वो भी बहुत स्वस्थ रहता है, क्योंकि सुबह शाम घूमना केवल एक आदत नहीं है बहनों, बल्कि हमारे स्वास्थ्य की जो जीवन है, जीवन की जो आधारशिला है वो है। और आधुनिक जीवन शैली में हम इतने बिजी हो गए हैं कि पढ़ाई और मोबाइल की दुनिया में इतने व्यस्त हो गए हैं कि शारीरिक जो गतिविधियाँ हैं वो कम हो गई है, और इसकी वजह है से मोटापा है, मधुमेह है, उच्च रक्तचाप है, तनाव है, या हृदय जैसी कोई बीमारियां हैं वो देखने को मिल रही है। ऐसे समय में यदि कोई एक सरल, सस्ता और प्रभावी उपाय है तो वो है नियमित सुबह शाम घूमना, क्योंकि सुबह का वातावरण बहुत शांत होता है और स्वच्छ और ताजगी से भरपूर होता है। सूर्योदय से पहले उसके आसपास की जो हवा है वो बहुत ज़्यादा स्वस्थ शुद्ध होती है। इस समय पेड़ पौधों से निकलने वाली जो ताज़ी हवा मन और शरीर दोनों को ऊर्जा प्रदान करती है। सुबह की जो सैर करते हैं इससे शरीर में ऑक्सीजन का संचार भी बढ़ता है, और जिससे कि हमारा मस्तिष्क है बहुत ज़्यादा सक्रिय हो जाता है और पूरे दिन कार्य करने की क्षमता है वो बढ़ जाती है। शाम को घूमना भी उतना ही जरूरी है बहनों। दिन भर के काम के बाद जब हम कुछ समय खुली हवा में चलते हैं तो शरीर की थकान दूर हो जाती है और मानसिक तनाव है वो भी कम होता है। शाम की जो सैर करके आते हैं हम तो परिवार के साथ समय बिताने का भी अच्छा अवसर होता है, क्योंकि इससे रिश्तों में जो मधुरता है वो भी आती है और मानसिक संतुलन है वो भी बना रहता है। तो जो घूमने से हमारे शरीर में अनेक लाभ होते हैं, क्योंकि जिससे अगर हम रोज घूमने की आदत है वो डालें तो हमारा सबसे पहले हमारा हृदय है वो स्वस्थ रहेगा, इसका रक्त संचार को बढ़ेगा, क्योंकि घूमने से हमारा रक्त संचार है वो और ज़्यादा बेहतर होता है और रक्तचाप को नियंत्रित रखने में भी सहायता करते हैं। तो हमें रोज़ाना 30 से 40 मिनट की तेज चाल का मॉर्निंग वॉक है वो ज़रूर करना चाहिए, करने से जो हमारे हृदय रोग है उसका खतरा बहुत ज़्यादा बहुत ही कम हो जाता है। और घूमने से शरीर की जो अतिरिक्त कैलोरी है वो खर्च होती है, जिससे कि वजन नियंत्रित रहता है और मोटापा आज की अनेक बीमारियों की जड़ है। यदि संतुलित भोजन है, साथ में नियमित घूमने की जो आदत है वो डालें तो हम वजन है वो आसानी से कम कर सकते हैं। और जो मधुमेह के रोगी हैं उनको, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है घूमना, क्योंकि ये शरीर में इंसुलिन की कार्यक्षमता को बढ़ाती है और रक्त में शर्करा को के स्तर को नियंत्रित करने में भी मदद करती है। तो आज की जो भागदौड़ भरी जिंदगी बहनों, जिंदगी में तनाव, चिंता, अवसाद, ये समस्याएं आम बनी रहती है। नियमित तौर पे अगर हम घूमने की आदत डालें तो घूमने से

हमारे शरीर में ऐसे हार्मोन निकलते हैं जो मन को तो खुश करते ही हैं। इसमें चिंता कम होती है, आत्मविश्वास है वो भी बढ़ता है, एक सकारात्मक सोच है वो विकसित होती है। और अगर हम सुबह की घूमने की जो आदत है उसके दौरान पक्षियों की जो चहचहाट है या उगते सूर्य के जो देखते हैं, तो प्रकृति की हरियाली मन को नई ऊर्जा है वो देती है। वहीं शाम की अगर हम बात करें, अगर हम शाम को भी घूमने निकलें तो दिन भर की जो थकान मिटाकर मन को शांति मिलती है। ऐसे ही हम आज अपने जो बच्चे हैं उनको भी यही आदत डालें, क्योंकि बच्चे लगभग मोबाइल, टीवी, वीडियो गेम, इसमें समय ज़्यादा बिताने लगे हैं। तो इससे क्या है कि उनकी जो शारीरिक गतिविधि है वो तो कम हो ही गई। यदि हम माता पिता बच्चों को नियमित रूप से सुबह या शाम घुमाने के लिए प्रेरित करें, उनको सैर के लिए सैर करने जाएं, तो उनकी हड्डियां है वो मजबूत होएगी रहेगी और प्रतिरक्षा जो क्षमता है वो भी बढ़ेगी। उनका जो शारीरिक एवं मानसिक विकास है वो भी और ज़्यादा अच्छा होगा। ऐसे ही युवा वर्ग के जो युवा हैं अपने, वो अक्सर पढ़ाई, नौकरी या सोशल मीडिया में व्यस्त रहते हैं, तो लगातार बैठे रहने से कमर में दर्द, गर्दन में दर्द, मोटापे जैसी समस्याएं वो बढ़ रही है। तो हमें रोजाना घूमने की आदत से हमारा जो शरीर है वो चुस्त और दुरुस्त रहता है और जो हमारी कार्य क्षमता है वो भी बढ़ती है और एकाग्रता में भी सुधार होता है। ऐसे ही जो हमारे सबसे घर के बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनके लिए भी एक औषधि से कम नहीं है घूमना। जैसे बच्चे हैं, युवा हैं, हम खुद बहनों और हमारे जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनके लिए तो एक औषधि से कम नहीं है, क्योंकि नियमित चलने से जोड़ों में जकड़न कम होती है और मांसपेशियां हैं वो मजबूत रहती है और जो संतुलन है वो और ज़्यादा अच्छा होता है। इससे गिरने की संभावना है वो भी कम होती है। साथ ही घूमने के दौरान हम अपने साथ चलने वाले मित्रों से बातचीत करने का अवसर भी हमें मिलता है, क्योंकि जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो दो लोग और भी मिलते हैं, तो जो और घूमते रहते हैं उनके साथ हमारा मन भी हल्का हो जाता है। दो बात हम अपनी रखते हैं, दो वो रखते हैं, उनके सुनते हैं, तो जो बाहर का जो माहौल है, जो वातावरण है, वो हमारे शरीर को सुकून देता है, जिससे हमारा अकेलापन है वो दूर हो जाता है। और सेम हमारी बहनों के लिए भी है, क्योंकि नियमित घूमना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शरीर को स्वस्थ रखना है तो हमें नियमित घूमना है। जो हमारे नियमित घूमने से क्या है, हमारे हार्मोन है वो संतुलित रहते हैं और मानसिक तनाव भी कम होता है। और अगर हमारी बहनें गर्भावस्था है, गर्भावस्था के दौरान अगर डॉक्टर की सलाह के अनुसार हल्की फुल्की जो थोड़ी बहुत सैर है वो करे तो बहुत ज़्यादा लाभदायक रहेगी, क्योंकि जिससे क्या है कि उसके जो वो गर्भावस्था का समय काल है वो बड़े अच्छे से गुजरेगा। हमें अगर हम बाहर मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, घूमने निकलते हैं, तो आरामदायक जूते हैं वो पहने, मौसम के अनुसार कपड़े पहने। अगर हम गर्मियों में घूम रहे हैं तो हल्के कपड़े और सर्दी में घूम रहे हैं तो गर्म कपड़े, और बहुत भारी भोजन करने के तुरंत बाद ना घूमें और हमेशा सुरक्षित और स्वच्छ स्थान पर ही चलें। पर्याप्त खूब सारा हमें पानी पीना चाहिए, जिससे क्या है कि हमें डिहाइड्रेशन नहीं हो। और कई बार क्या होता है कि हम बीमार हो जाते हैं, हमारे घर में कोई सदस्य फिर भी उनका मन करता है घूमने निकलें, लेकिन हमें ध्यान रखना है, अगर हमें डॉक्टर ने सलाह लेकर ही घूमें, क्योंकि बहुत ज़्यादा कई बार वहाँ बीपी लो हो जाती है रास्ते में घूमने निकलते हैं, पानी की कमी हो जाती है, तो बीमार व्यक्ति है वो अगर डॉक्टर की परामर्श लेकर ही घूमे तो सही अच्छा है उसके लिए। और घूमने का एक समय है बहनों, वो निश्चित तय करें कि मुझे सुबह 5 बजे घर से घूमने निकलना है तो निकलना है। कम से कम पहले दिन या शुरुआत के कुछ दिन 15-20 मिनट की आदत है वो डालें। धीरे धीरे हम अपना समय बढ़ा सकते हैं, 15-20 मिनट से 30 से 45 मिनट तक कर सकते हैं। यदि संभव हो तो हम हमारे परिवार के साथ या मित्रों के साथ घूम सकते हैं। और मोबाइल का उपयोग है वो कम करें, क्योंकि प्रकृति का आनंद है वो लें। स्वस्थ जीवन के लिए महंगी दवाइयों से बहनों अधिक आवश्यक है स्वस्थ आदतें अपनाना, क्योंकि सुबह और शाम की जो हमारी घूमने की जो आदत है वो एक ऐसी आदत है जो शरीर और मन और आत्मा तीनों को स्वस्थ

0: स्वस्थ रखती है। ये न केवल बीमारियों से बचाती है बल्कि जीवन में उत्साह है, ऊर्जा है, सकारात्मकता से भी भरती है। यदि हम रोजाना कुछ समय घूमने के लिए निकालें तो लंबे समय तक स्वस्थ और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। तो स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है बहनों। हमें आज से ही और अभी से ही संकल्प लें और सुबह घूमने की आदत है वो जरूर डालें।
1: जाने मन चुपके चुपके सारी दुनिया से छुपके तुमने ऐसी बात कही दिल मेरा खो गया।

बिल्कुल बहनों, प्यारे से गाने के बाद बात करते हैं इस प्यारे से मौसम। और इस प्यारे से मौसम में हम जो ये बारिश का मौसम है, इस मानसून आए, इस मानसून में हम खेती के लिए सबसे बड़े उपयोगी माना जाता है। और इस समय मिट्टी में जो पर्याप्त नमी है वो भी रहती है, जिससे क्या है कि हम कुछ भी बीज डालते हैं, बीजों का जो अंकुरण है वो तेजी से होता है। और अधिक जल की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें फफूंद है, कीट है, वो लग जाती है। इसीलिए इस मौसम में थोड़ी अतिरिक्त हमें सावधानी है, वो बर्तन ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं दे। और इस मौसम के अंदर जो लगाई जाने वाली सब्जियां हैं, जैसे लौकी, लौकी है वो बारिश के मौसम में बहुत ज़्यादा कहते हैं लोकप्रिय है। इसकी बेल है वो तेजी से बढ़ती है, इसे धूप वाली जगह पर लगाना और बीज बोने के बाद रोजाना पानी दे। और लेकिन खेत या गमले में पानी जमा न होने दे। और जो बेल चढ़ी हुई है उसको सहारा देने के से पैसे जो हम अगर सहारा दें, सपोर्ट देंगे उसका, तो फल अच्छे से आकार में ले लेंगे। और तोरई है, तोरई की खेती भी बरसात में अच्छी होती है। और इसके लिए जो भुरभुरी और अच्छी जल निकाल

काशी वाली मिट्टी सबसे उपयोगी है, क्योंकि समय समय पर खरपतवार हटाते रहें और जो उसमें खाद वगैरह जैविक खाद वगैरह वो दे। और करेला भी बारिश के मौसम में है वो होते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य वर्धक के लिए अच्छी सब्जी है। इसकी जो जो करेला

राजा हवा का जो आवागमन है वो बना रहे, और भिंडी के अंदर जो रोग है वो कम लगे। सेम है बरसात के मौसम में सेम की खेती भी कर सकते हैं, बहुत उपयोगी होती है, क्योंकि पौधों को सहारा देने से फल अधिक बढ़ते हैं और पौधे हमें स्वस्थ भी रखते हैं। खीरा है, खीरा पानी से भरपूर और गर्मी में राहत भी देता है देने वाली सब्जी है, तो इसे धूप वाली जगह लगाए और जो खीरे की बेल है उसको फैलने के लिए पर्याप्त स्थान भी दें। ककड़ी है, ककड़ी की खेती भी हम बारिश के मौसम में कर सकते हैं, अच्छी रहती है, इसके लिए हल्की और उपजाऊ मिट्टी उपयुक्त है। मिर्ची है, हरी मिर्ची के पौधे जुलाई में लगाए जा सकते हैं। पौधों में जल भराव नहीं होना चाहिए और समय समय पर उनमें खाद वगैरह डालते रहें तो अच्छी पैदावार मिले। बैंगन है, बैंगन भी बारिश के मौसम में रोपी जा सकती है। पौधों के आसपास मिट्टी को समय समय पर ढीला करें और जो रोगग्रस्त पत्तियां हैं उनको हटा दें। टमाटर की खेती भी कर सकते हैं। अच्छी मिट्टी का चयन सब्जियों को अच्छी पैदावार के लिए सबसे जरूरी है बहनों। अच्छी मिट्टी उपजाऊ, और जो मिट्टी में गोबर की खाद है, कंपोस्ट है, वर्मी कंपोस्ट है, ये सब मिलाने से पौधों को पर्याप्त पोषण मिलता है। और जो पानी देने का तरीका है, कहीं सिंचाई का जो तरीका है, बरसात के मौसम में अतिरिक्त पानी देने की आवश्यकता नहीं होती है। केवल तब सिंचाई करें जब मिट्टी सूखी लगे, जल भराव से जड़ें सड़ सकती हैं और जो खरपतवार है वो पौधों को पोषण छीन लेती है, इसीलिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें। इससे क्या है कि मिट्टी में हवा का संचार है, आवागमन है, वो बना रहेगा और जो पौधों में रोग है वो नहीं लगेंगे, क्योंकि बारिश के मौसम में फफूंद कीटों का प्रकोप है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए हमें पौधों को सुरक्षित रखने के लिए हमें नीम का घोल है, नीम का तेल है, या जैविक कीटनाशक का उपयोग भी रहता है कर सकते हैं, और रोगग्रस्त जो पत्तियां हैं उनको तुरंत हटा दें। और जो लौकी, जो बेल की जो सब्जियां हैं, लौकी, करेले, तोरई, सेम को जाली या मचान पर चढ़ा के, या इससे क्या है कि हम फल है वो साफ रहते हैं और रोग भी कम लगते हैं और तुड़ाई भी आसान होती है। और बहनों हम गमलों में भी सब्जियां उगा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास अगर खेत नहीं है तो हम छत या बालकनी या आंगन में भी बड़े, या यूं कहें कि बड़े गमले में भी कोई बैग या ग्रो बैग होता है उसमें भी सब्जियां उगा सकते हैं और उचित धूप, खाद या पानी मिलने पर अच्छी पैदावार ले सकते हैं। हम किचन गार्डन भी कर सकते हैं। घर की ताजी और सुरक्षित सब्जियां स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती है। बाजार पर निर्भर कम रहें और हमारा जो खर्च है वो भी कम होगा, हमारा बजट है वो भी नहीं डगमगाएगा। बच्चों को बागवानी की रुचि है वो भी सीखने को मिलेगी। और पौधों की रोजाना देखभाल है वो जरूर करें, क्योंकि रोजाना पौधों को देखें, यदि पत्तियां पीली पड़ रही है तो, या कीट उसमें दिखाई दे रहे हैं तो पौधे मुरझाने लगे, तो तुरंत हमें समय पर ध्यान दें और उनको नुकसान होने से बचाएं, ताकि हमारे पौधे हैं सुरक्षित रह सकें। और घर में सब्जियां उगाने से हरियाली तो बढ़ती है बहनों, वातावरण है घर का जो माहौल है वो भी, और जो वो वातावरण है वो भी शुद्ध होता है, और जो जैव विविधता को बढ़ावा भी मिलता है। रसोई के जो जैविक कचरे से कंपोस्ट बनाकर हम इसका उपयोग आसानी से कर सकते हैं। तो हमें बारिश के मौसम में सब्जियों की खेती के लिए सुनहरा अवसर है, क्योंकि यदि सही समय पर लौकी, तोरई, करेला, भिंडी, खीरा, ककड़ी, बैंगन और मिर्ची जैसी सब्जियां हम लगाएं तो उनको नियमित देखभाल करें और भरपूर और गुणवत्ता प्रदान करें, तो हम अच्छी से अच्छी गुणवत्तापूर्ण उत्पादन है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो अच्छी मिट्टी और अच्छी खाद और अच्छा जल, जो उचित जल की जो निकासी है वो समय पर निराई गुड़ाई और जो रोग कीटों से बचाव, इस सफल सब्जी की उत्पादन कुंजी है। चाहे आपके पास बड़ा खेत हो या छोटी सी बालकनी हो, या यूं कहे थोड़े से प्रयास से आप अपना हरा भरा किचन गार्डन है वो तैयार कर सकते हैं।

प्यारे से गाने के बाद हम बात कर रहे थे, हमारी जो कहते हैं ना कि घर के अंदर हम सब्जी है वो लगाएं, कहते हैं बहनों स्वस्थ जीवन की जो शुरुआत है वो स्वस्थ भोजन से होती है, और स्वस्थ भोजन की शुरुआत अपने हाथों से उगाई गई ताज़ी सब्जियों से। तो हम बारिश के मौसम में हम सभी बहनें अपने घर में, आंगन में, छत में या खेत में कुछ ना कुछ सब्जियां ज़रूर लगाएं। इससे न केवल हमारे स्वास्थ्य है वो बेहतर होगा, बल्कि जो पर्यावरण है वो भी सुरक्षित रहेगा, और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण जो कदम है वो भी होगा। तो बहनों ये बात कर रहे थे हम सब्जियों की, अभी बात कर रहे हैं हम रात को स्वास्थ्य के लिए भी ज़रूरी है कि रात को जल्दी सोने की जो आदत है वो डालें, क्योंकि स्वास्थ्य ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। और यदि शरीर स्वस्थ है तो हम अपने परिवार, समाज, जो हमारा कार्य क्षेत्र है इसमें बेहतर योगदान दे सकते हैं। और अच्छे स्वास्थ्य के लिए संतुलित भोजन, नियमित व्यायाम, स्वच्छता और पर्याप्त नींद ये ज़रूरी है। आज की भागदौड़ भरी जीवन शैली में लोग अपने खान पान और दिनचर्या के साथ साथ नींद को भी अनदेखी करने लगे हैं। देर रात तक मोबाइल चलाना, टीवी देखना, सोशल मीडिया पर समय बिताना, देर तक काम करना अब एक सामान्य आदत बन गई है। इसका सीधा असर शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। तो जल्दी सोना और जल्दी उठना मनुष्य को स्वस्थ, समृद्ध और बुद्धिमान बनाता है। तो हमें ये आदत है वो डालनी है, क्योंकि हमारा शरीर एक निश्चित जैविक घड़ी के अनुसार काम करता है। दिन में इसका एक्टिव रहता है और रात में विश्राम करना शरीर की एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। जब हम देर रात तक जगते हैं तो ये जो प्राकृतिक लय है वो बिगड़ जाता है। इससे क्या है कि शरीर की जो हार्मोन है उसका असंतुलन है, या यूँ कहें मस्तिष्क का जो विश्राम है वो प्रभावित हो जाता है। रात में समय पर सोने से शरीर को पर्याप्त आराम मिलता है, अगले दिन व्यक्ति तरोताज़ा महसूस करता है, उसके अंदर ताजगी सी आ जाती है और काम करने की जो एनर्जी है वो वापस हो जाती है, उसका जो कार्य क्षमता है वो बढ़ती है और पूरे दिन

ऊर्जा है वो बनी रहती है। नींद से क्या है, शरीर को ऊर्जा मिलती है, दिन भर काम करने के बाद शरीर को आराम की जरूरत होती है, और रात को अच्छी नींद शरीर को नई ऊर्जा देते हैं और थकान दूर करते हैं, और हमारा मस्तिष्क है वो भी बेहतर कार्य करता है। नींद के दौरान मस्तिष्क पूरे दिन की जो जानकारी को अव्यवस्थित करता है, इसके इससे क्या है कि स्मरण शक्ति है जो हमारी एकाग्रता है और निर्णय लेने की क्षमता है वो बढ़ती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो मजबूत होती है, पर्याप्त नींद लेने वाले लोगों की रोगों से लड़ने की जो क्षमता है वो अधिक होती है, शरीर है वो संक्रमण से बेहतर तरीके से मुकाबला कर पाता है, और हृदय है वो स्वस्थ रहता है। समय पर सोना, पर्याप्त नींद लेना हृदय को स्वस्थ रखने में सहायक है। इससे क्या है कि रक्तचाप है वो नियंत्रित रहता है और हृदय रोगों को जो जोखिम है वो कम होता है, मानसिक स्वास्थ्य है वो भी बेहतर रहता है हमारा, अच्छी नींद तनाव चिंता चिड़चिड़ापन कम करने में मदद करता है और अधिक से अधिक सकारात्मक और संत महसूस करता है। देर रात जागते रहेंगे तो हम सुबह देर से उठेंगे, पूरे दिन आलस रहेगा, हमारा किसी काम में मन नहीं लगेगा, आंखों में जलन, सिर में दर्द, तनाव चिड़चिड़ापन, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा होना, मोटापा भी बढ़ जाता है और उच्च रक्तचाप है उसका खतरा भी बढ़ जाता है, पाचन संबंधी समस्याएं, स्मरण संबंधी जो स्मरण शक्ति है एकाग्रता में उसमें भी कमी आती है। तो हम कोशिश करें समय पर जगने की, और जो रात को है वो ज़्यादा देर तक ना जगे। आज मोबाइल फोन देर रात तक जागने का सबसे बड़ा कारण बन गया है, तो हमें ये कम से कम सोने से 1 घंटा पहले फोन को बंद करके सोएं, क्योंकि मोबाइल की स्क्रीन से जो निकलने वाली नीली रोशनी शरीर को नींद लेने वाले हार्मोन जो मेलाटोनिन का निर्माण को प्रभावित करती है, और इससे नींद है वो देर से आती है और उसकी गुणवत्ता में भी कमी होती है। तो हमें है कि सोने से पहले कम से कम 1 घंटे पहले मोबाइल है, लैपटॉप है या टीवी है वो ये सब बंद कर देनी चाहिए, और ये सभी हमारे घर के जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं उनको भी, वो भी हमसे ही देख के सीखते हैं, जैसा हम करें वैसा भी वो बच्चे करेंगे। तो बच्चों के लिए भी जल्दी सोना जरूरी है, क्योंकि बच्चे का जो शारीरिक और मानसिक विकास है वो नींद पर्याप्त नींद लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ती है और स्मरण शक्ति है वो भी मजबूत होती है, और ऊंचाई और शारीरिक विकास है वो भी बढ़ता है, और व्यवहार है वो सकारात्मक रहता है। तो माता पिता को स्वयं भी समय पर सोने की आदत अपनानी चाहिए, क्योंकि बच्चे अपने बड़ों से सीखते हैं, और ऐसे ही हमारे जो घर के युवा हैं उनको भी समय पर सोने की आदत है वो डालें। समय पर सोने से पढ़ाई में ध्यान है वो बड़े लगेगा, परीक्षा की जो तैयारी कर रहे हैं वो और अच्छी होगी, तनाव कम होगा और जो मानसिक संतुलन है वो सही रहेगा, और ये ऐसा ही हमारी बहनों के लिए भी जरूरी है, क्योंकि अगर घर और नौकरी की दोहरी जिम्मेदारियों के कारण कई महिलाएं हैं वो नींद पूरी नहीं कर पाती है, और अगर वो नींद पूरी करने लगे तो जो थकान है वो कम होने होती है होने लगेगी, और हार्मोन है वो संतुलित रहेंगे, और मानसिक तनाव है वो भी कम होगा, और कार्यक्षमता है वो भी बढ़ती रहेगी। ऐसे ही हमारे घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको भी जल्दी सोने की आदत है वो डालें, रोज समय पर सोएं और समय पर उठें, सोने से पहले मोबाइल टीवी को बंद कर दें, रात का भोजन हल्का और समय पर करें, शाम के बाद चाय कॉफी का अधिक सेवन ना करें, और सोने से पहले किताबें पढ़ें या हल्का संगीत सुनें, और दिन भर नियमित शारीरिक गतिविधियां करें, सोने से पहले मन को शांत रखें, और सुबह जल्दी उठने की जो आदत है तभी बनेगी जब रात को हम समय पर सोएं। सुबह की जो मॉर्निंग वॉक है, घूमना है, योग है, प्राणायाम है, करने से शरीर की जो जैविक घड़ी है वो संतुलित रहती है, और रात में अच्छी नींद भी आती है, और संतुलित भोजन करें, रात को बहुत अधिक तला भुना ना खाएं, मसालेदार भोजन करने से नींद प्रभावित हो सकती है, तो हमें हल्का और पौष्टिक खाना है वो खाना है ताकि नींद में आसानी रहे, और जो लोग समय पर सोते हैं
वे अधिक ऊर्जावान होते हैं।

हैं और उनकी कार्य क्षमता या यूं कहें निर्णय लेने की जो क्षमता है वो भी अच्छी होती है और रचनात्मक सोच है वो बेहतर होती है। इसीलिए सफल जीवन के लिए पर्याप्त नींद उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी मेहनत। तो हमें रात को जल्दी सोने की आदत एक छोटा सा परिवर्तन है लेकिन इसका प्रभाव जीवन के हर क्षेत्र में पड़ता है और ये हमें शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से संतुलित और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाती है। तो देर रात तक जागना आधुनिक जीवन शैली और की मजबूरी नहीं बल्कि एक ऐसी आदत है जिसे इच्छा शक्ति और सही दिनचर्या से बदला जा सकता है। तो हम बहनों संकल्प लें कि हम समय पर सोएं, पर्याप्त नींद लेंगे और स्वस्थ जीवन शैली अपनाएंगे। कहते हैं कि स्वस्थ शरीर, शांत मन और सफल जीवन की शुरुआत अच्छी नींद से होती है। तो हमें समय पर सोना और समय पर जागना है।

अभी महिलाएं सुन रही थी अपना कार्यक्रम महिला जगत। ये आकाशवाणी का चुरू केंद्र है FM 100.7 MHz पर। दोपहर के 2 बजने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से 2 बजे मिड डे न्यूज और 2:15 पर दोपहर समाचार।

0: Around 60 towns and villages outside the capital, damaging dozens of homes and vehicles. In Ukraine, 13 people were killed and dozens of others injured after Russian drones and missiles hit residential buildings in Kyiv as part of a broader wave of Russian overnight attacks. In the FIFA World Cup, Belgium staged a stunning comeback to beat Senegal 3-2 after extra time in the round of 32 and qualify for the round of 16. Co-hosts US registered their first win in the knockout round after 2002. This morning, they defeated Bosnia-Herzegovina 2-0 in the round of 32 to advance into the round of 16, where they will take on Belgium. Benchmark domestic equity indices were trading around 0.5% up in the afternoon session today. The Sensex rose 402 points at 77,325, while the Nifty advanced 129 points to 24,135 when reports last came in. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi holds annual summit-level talks with his Japanese counterpart Sanae Takaichi in New Delhi. Both countries signed several agreements, including in economic and energy security, pharmaceuticals and AI. Prime Minister Modi says India-Japan bilateral relationship has stood the test of time. India's proposal for comprehensive convention on international terrorism gains renewed support at UN General Assembly. Sri Amarnath Ji Yatra begins with first batch of pilgrims leaving Bhagwati Nagar base camp in Jammu. Southwest monsoon covers entire Delhi, advances further across parts of northern and western states. In the FIFA World Cup, United States registers first knockout stage win since 2002, defeating Bosnia-Herzegovina 2-0. Belgium also enter round of 16 in extra time victory over Senegal. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के बीच वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तर की बातचीत, दोनों देशों के बीच आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा, फार्मास्यूटिकल्स और एआई सहित कई समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा, भारत जापान के द्विपक्षीय संबंध समय की कसौटी पर खरे उतरे। संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन को लेकर भारत के प्रस्ताव को एक बार फिर से समर्थन मिला। जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे के रवाना होने के साथ ही श्री अमरनाथ जी यात्रा शुरू। दक्षिण पश्चिम मानसून की दिल्ली में दस्तक, उत्तरी तथा पश्चिमी राज्यों के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ा। फीफा विश्व कप में अमेरिका ने बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से हराकर 2002 के बाद पहली जीत दर्ज की। बेल्जियम ने सेनेगल को हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। भारत और जापान ने आर्थिक तथा ऊर्जा सुरक्षा, फार्मास्यूटिकल्स, रक्षा तथा एआई सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के साथ वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तर की वार्ता की। सम्मेलन में दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज के समय में सामूहिक विश्वास सबसे बड़ी संपत्ति है और भारत जापान की द्विपक्षीय साझेदारी समय की कसौटी पर खरी उतरी है। श्री मोदी ने कहा कि इस परिकल्पना को साकार करने के लिए भारत और जापान ने एआई के क्षेत्र में एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जापान की सटीक प्रौद्योगिकी और भारत की सॉफ्टवेयर क्षमताओं का संगम वैश्विक एआई विकास को नई गति और शक्ति प्रदान करेगा।
2: प्रधानमंत्री ताकाइची और मेरा विश्वास है कि टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप हमारे सहयोग का सबसे मजबूत स्तंभ बनेगी। इसी विजन को साकार करने के लिए आज एआई के क्षेत्र में हमने ज्वाइंट स्टेटमेंट भी जारी किया है। भारतीय एआई इकोसिस्टम के कई प्रमुख संस्थानों में भी आज अपने जापानीज पार्टनर के साथ एग्रीमेंट्स किए हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि भारत जापान जैव गैस पहल के माध्यम से भारत में 1000 जैव गैस और जैविक उर्वरक संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इससे भारत के गांवों में स्थिरता, समृद्धि और ग्रामीण आजीविका को नई शक्ति मिलेगी।
2: भारत और जापान दोनों इकोनॉमिक सिक्योरिटी और एनर्जी सिक्योरिटी का महत्व अच्छी तरह समझते हैं। इसी दिशा में आज हमने इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए एक ज्वाइंट रोडमैप तैयार किया है। इसके माध्यम से हम सेमीकंडक्टर, क्वांटम और एडवांस मटेरियल जैसे स्ट्रेटेजिक क्षेत्रों में सप्लाई चेन रेजिलियंस को मजबूत करेंगे। एनर्जी सिक्योरिटी के क्षेत्र में भी इंडिया जापान बायोगैस इनिशिएटिव के माध्यम से हमें भारत में 1000 बायोगैस और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर प्लांट्स लगाने में सहायता मिलेगी।
1: इससे पहले आज प्रधानमंत्री ताकायची का राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में औपचारिक स्वागत किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित थे। जापान की प्रधानमंत्री कल शाम 3 दिन के भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंचे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये दौरा भारत और जापान के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन के लिए भारत के लंबे समय से चले आ रहे प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिर से समर्थन मिला है। 140 सदस्यों द्वारा अपनाई गई संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक आतंकरोधी रणनीति की 9वीं समीक्षा में सदस्य देशों से आग्रह किया गया है कि वे भारत द्वारा 3 दशक पहले प्रस्तावित सम्मेलन को अंतिम रूप देने के लिए हर संभव प्रयास करें। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि सर्वमान्य कानूनी ढांचे का अभाव वैश्विक आतंकरोधी प्रयासों को कमजोर करता है। उन्होंने आतंकवाद से निपटने में दोहरे मापदंड न अपनाने पर बल देते हुए अपराधियों, वित्त पोषकों और प्रायोजकों को जवाबदेह ठहराने का आह्वान किया।
3: India has been a victim of cross-border terrorism for decades.
4: भारत दशकों से सीमा पार आतंकवाद को झेल रहा है। हमने इसकी भारी कीमत चुकाई है। इसी अनुभव के चलते भारत ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई है। आतंकवाद के सभी रूपों और तरीकों की निंदा की जानी चाहिए। भारत ने आतंकवाद के लिए फंडिंग को रोकने पर वैश्विक ध्यान केंद्रित करने की दिशा में काम किया है। भारत का मानना है कि आतंकवाद विरोधी प्रयासों को राजनीति से प्रेरित बयानों से कमजोर नहीं किया जाना चाहिए।
1: अमेरिका, इसराइल और अर्जेंटीना ने प्रस्ताव के विरुद्ध मतदान किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। आज जम्मू में भगवती नगर आधार शिविर से कड़ी सुरक्षा के बीच उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए 4,822 तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को रवाना किया। इस पवित्र यात्रा में शामिल होने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से तीर्थयात्री जम्मू पहुंच रहे हैं। 4,822 श्रद्धालुओं का पहला जत्था, जिसमें बालताल रूट के लिए 2,312 और पहलगाम रास्ते के लिए 2,510 लोग शामिल थे, 147 गाड़ियों के काफिले में रवाना हुए। ग्रामीण विकास, कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण, विकसित भारत जयरामजी अधिनियम 2025 देश में रोजगार सुनिश्चित करने, ग्रामीण आजीविका को मजबूत करने और गांवों के विकास में तेजी लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। श्री चौहान ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ आज तिरुपति जिले के मुक्कावरी पल्ले गांव में विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 का शुभारंभ किया। सभा को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि योजना का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि कोई भी गरीब मजदूर बेरोजगार न रहे और सभी को रोजगार मिले।
5: मनरेगा में केवल 100 दिन रोजगार मिलता था, विकसित भारत जी राम जी योजना में पूरे 125 दिन मजदूर को रोजगार मिलेगा। और रोजगार देने की बात प्रधानमंत्री ऐसे नहीं कह रहे, पहले साल ही विकसित भारत जी राम जी योजना में केंद्र ने जो अपना पैसा दिया है वो है 95,600 करोड़ रुपया और राज्यों का 40% शेयर मिलेगा, तो एक साल में ही खर्च होंगे 1,51,282 करोड़ रुपया।
1: श्री चौहान ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आंध्र प्रदेश के लिए 70,000 से अधिक आवासों की मंजूरी दी। उन्होंने ग्रामीण संपर्क और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से 422 करोड़ रुपए की स्वीकृत राशि से 146 ग्रामीण सड़कों और 19 पुलों के निर्माण के लिए स्वीकृति पत्र भी सौंपे। केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री

0: भूपेंद्र यादव ने कहा है कि भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी एक से दूसरी तकनीक की जगह नहीं ले रहा है, बल्कि इससे टिकाऊ औद्योगिक इकोसिस्टम का निर्माण हो रहा है। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी विकसित भारत के लिए देश को इलेक्ट्रिक मोबिलिटी हब बनाने पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ तथा संतुलित विकास के साथ जीवन को सुगम बनाने के प्रयास कर रही है। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत मॉनसून के मौसम में 21 लाख पौधे लगाए जाएंगे। जिले में विभिन्न स्थानों पर बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया जाएगा। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने आज रांची के लोकभवन में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के अंतर्गत जनगणना प्रपत्र भरकर संबंधित मुख्य चुनाव अधिकारी रवि कुमार और जिला चुनाव अधिकारी मंजुनाथ भजंत्री को सौंपा। उपराज्यपाल ने देश के सभी योग्य पात्रों को जनगणना प्रपत्र सही समय पर भरने की अपील की। बंगलुरु दक्षिण तालुक में एक चट्टान के गिरने से 7 प्रवासी श्रमिकों की मौत हो गई। दुर्घटना उस समय हुई जब मदपटना गांव स्थित कावेरी क्रशर पत्थर खदान में एक विशाल चट्टान नीचे खदान में गिर गया, जहां मजदूर काम कर रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और खदान के मालिकों की तलाश जारी है। मृतकों में बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तरी कर्नाटक के निवासी थे। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डॉ जी परमेश्वर ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए खदान मालिकों के खिलाफ उचित कार्रवाई का निर्देश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने ISI प्रायोजित अंतर्राज्यीय आतंकी और हथियार नेटवर्क पर कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी ISI हैंडलर शहजाद भट्टी और उसके साथियों के निर्देश पर राष्ट्रीय राजधानी में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून आज दिल्ली के सभी इलाकों सहित राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश के कुछ और हिस्सों में तथा मध्य प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के ज्यादातर भागों में पहुंच गया है। राजधानी दिल्ली में बारिश से गर्मी और उमस भरे मौसम से काफी राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 से 3 दिन में मॉनसून के उत्तर भारत के कई और इलाकों में आगे बढ़ने की उम्मीद है। वहीं पश्चिमी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों के लिए तेज बारिश की आशंका को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश में मॉनसून के आगमन से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है और राज्य के लगभग सभी हिस्सों में बारिश हुई है।
1: दक्षिण पश्चिम मानसून मंगलवार से ही आधिकारिक तौर पर प्रदेश में दाखिल हो चुका है और ट्रफ लाइन आजमगढ़, बरेली और अयोध्या जिलों से होकर गुजर रही है। राज्य के कई हिस्सों में पिछले 24 घंटों में मध्यम से भारी बारिश दर्ज की गई, जिससे लोगों को लंबे वक्त से पड़ रही भीषण गर्मी से राहत मिली। सुल्तानपुर, मुजफ्फरनगर, बदायूं, सहारनपुर और संभल में बहुत भारी बारिश हुई, जिससे कुछ क्षेत्रों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। हालांकि दिन के तापमान में भी गिरावट आई। ये बारिश किसानों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है, जो धान की बुआई में देरी के कारण बेसब्री से मानसून का इंतजार कर रहे थे। मौसम विभाग ने आज कई जिलों में भारी बारिश का पूर्वानुमान लगाया है और कहा है कि राज्य भर में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए मौसम के हालात बेहतर बने हुए हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: महाराष्ट्र में आज लगातार दूसरे दिन भी मूसलाधार बारिश जारी रही।
2: मुंबई में लगातार हो रही तेज बारिश के कारण निचले इलाकों में जलभराव हो गया है, यातायात धीमी पड़ गई है और उपनगरीय रेल सेवाएं कुछ मार्गों पर प्रभावित हो रही है। लगातार बारिश के चलते पवई लेक पूरी तरह भर चुका है। मुंबई विश्वविद्यालय ने पालघर जिला तथा पनवेल महानगर पालिका क्षेत्र के महाविद्यालयों में आज होने वाली परीक्षा रद्द कर दी है। मौसम विभाग ने उत्तर महाराष्ट्र तथा दक्षिण महाराष्ट्र गोवा तट पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी है। मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है। निवेदिता, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: कनाडा के अधिकतर क्षेत्रों में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। वहीं कुछ क्षेत्रों में बारिश और बाढ़ की समस्या बनी हुई है। ओंटारियो, क्यूबेक, प्रेरीज और नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज के कुछ हिस्सों के लिए गर्मी की चेतावनी जारी की गई है। अधिकारियों ने लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी पीने,

0: बाहरी गतिविधियों से बचने और वरिष्ठ नागरिकों तथा बच्चों का ध्यान रखने की सलाह दी है। यूक्रेन के कीव में रूस के ड्रोन और मिसाइल हमले में 13 लोग मारे गए और कई लोग घायल हो गए। स्थानीय समाचार एजेंसियों ने बताया कि आज शहर के कई हिस्सों में विस्फोटों की आवाजें सुनी गईं। ये हमले सप्ताह की शुरुआत में यूक्रेन द्वारा मॉस्को पर किए गए ड्रोन हमलों के बाद हुए हैं। फीफा विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को अतिरिक्त समय में 3-2 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। यूरी टेलेमंस ने 125वें मिनट में पेनल्टी से गोल दागकर बेल्जियम को 3-2 की रोमांचक जीत दिलाई। राउंड ऑफ 32 के मैच में सह मेजबान अमरीका ने आज सुबह बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से हराकर 2002 की बार पहली जीत दर्ज की। अब अमरीका का मुकाबला बेल्जियम से होगा। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के सत्र में सेंसेक्स 402 अंक के साथ 77,325 के उच्चतम स्तर पर और निफ्टी 129 अंक बढ़कर 24,135 पर आ गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के बीच वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तर की बातचीत। दोनों देशों के बीच आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा, फार्मास्यूटिकल्स और एआई सहित कई समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा, भारत जापान के द्विपक्षीय संबंध समय की कसौटी पर खरे उतरे। संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन को लेकर भारत के प्रस्ताव को एक बार फिर से समर्थन मिला। जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे के रवाना होने के साथ ही श्री अमरनाथ जी यात्रा शुरू। दक्षिण पश्चिम मानसून की दिल्ली में दस्तक, उत्तरी तथा पश्चिमी राज्यों के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: FM 100.7 MHz पर ये आकाशवाणी का चुरू केंद्र है। दोपहर के 2:30 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का प्रोग्राम तराने नए पुराने।

सुरैया की आवाज में आप सुन रहे थे शमा फिल्म का गीत। ये फिल्मी गीत इस समय आप आकाशवाणी के चुरू केंद्र से सुन रहे हैं FM 100.7 MHz पर। कार्यक्रम है तराने नए पुराने।

पतिता फिल्म का गीत आप सुन रहे थे हेमंत कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में। कार्यक्रम है तराने नए पुराने। अगला गीत कोहरा फिल्म से, आवाज हेमंत कुमार की।

और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे। तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चूरू के साथ। आकाशवाणी चूरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चूरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चूरू, आपकी पहचान, हमारी आवाज़।

सुमन कल्याणपुर की आवाज में अभी आपने सुना फरियाद फिल्म का गीत। अब हम आपको सुनवा रहे हैं मुकेश का गाया अनीता फिल्म का गीत।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का प्रोग्राम तराने नए पुराने अब यहीं संपन्न होता है। FM 110.7 MHz पर हम आकाशवाणी के चुरू केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 3 बज चुके हैं। आज की हमारी प्रथम सभा अब यहीं संपन्न होती है। द्वितीय सभा में शाम 4 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें अनुमति दें।